सफर फिल्म से ये गीत आपने सुना, मन्ना डे का गाया हुआ। इंदिवर की रचना थी और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। गीतों की श्रृंखला भी ऐसे ही चलती रहती है, कभी खुशी के पल होते हैं तो हम खुशी के गीत बहुत अच्छे महसूस करते हैं, और कहीं जब हमारी जीवन नैया किनारे पर लग जाती है तो हम उन्हीं धाराओं में चलते रहते हैं।

जीवन धारा फिल्म से गीत आपने सुना, सुरेश वाडेकर और आशा भोंसले का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगला गीत एक फूल चार कांटे फिल्म से लता मंगेशकर का गाया हुआ, हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

जब वही सहारा बन गया तो दुनिया वालों से क्या काम हो सकता है। और कार्यक्रम की आखिरी रचना झूठा कहीं का फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में, गुलशन बाबरा के बोल हैं, आरडी बर्मन का संगीत।

और इस गीत के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी दोस्त वंदना चुक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। अब आप सुनेंगे वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉ. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होर्मुज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का

सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉ ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है।
1: अफवाहों

0: धोखाधड़ी से।
1: जागरूक होना है अपने अधिकारों के प्रति,
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए,
0: सजग रहिए।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं दर्पण तिकिया। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं। पहले बात करेंगे मैराथन की, जहां भारत ने इतिहास गढ़ दिया। 44 साल का जो इंतजार था वो समाप्त हो गया। भारत के सावन बरवाल ने मेंस मैराथन में 2 घंटा 11 मिनट 37 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल जीत लिया है। यह एक नेशनल रिकॉर्ड है। अब उनका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी है। जापान के इच्छिता यशमिता ने 2 घंटा 10 मिनट 49 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि चीन की पेयू फेंग ने 2 घंटा 12 मिनट 13 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 1982 के एशियन गेम्स में होसुर कुकप्पा सीताराम के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद मैराथन में भारत का यह पहला मेडल है, जिससे 44 साल का जो इंतजार था वो खत्म हो गया।
2: एंड द गुड न्यूज हैज जस्ट केप्ट ऑन कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एथलेटिक्स। वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द मेंस 200 मीटर डैश, वेयर अनिमेश खुजूर विद अ टाइमिंग ऑफ 21.1 सेकंड हैज मेड इट टू द final. Also, the decathlon event is going on, and of course all eyes there are on Tejaswin Shankar, who medaled up at the recently concluded Commonwealth Games. 3 events have been done: 100 meters, long jump and shot put have been done, and Tejaswin Shankar is number 3 on the list. Currently he's number 3 in the standings. Also featuring in the same event is India's Taufeeq Noshad, who's currently at number 9.
1: एक और रजत पदक की बात कर लेते हैं दर्पण। शूटिंग में एशियन गेम 2026 में जो भारतीय महिला निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है उसकी बात करते हैं। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में टीम इवेंट में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। भारतीय जो महिला टीम ने भारतीय टीम ने जो टीम थी उसमें तिलोत्तमा सेन, विदर्शी के विनोद और आशी चौक से शामिल थी। भारतीय तिगड़ी ने कुल 1763 अंक हासिल किए। चीन ने 1773 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता और गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया, जबकि कजाकिस्तान ने 1754 अंकों के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के लिए एक और अच्छी खबर यह रही कि तिलोत्तमा सेन और विदर्शा के विनोद ने जो व्यक्तिगत यानी पर्सनल स्पर्धा के फाइनल में भी जगह बना ली है। तिलोत्तमा क्वालिफिकेशन में तीसरे और विदर्शा छठे स्थान पर रही थी। इस तरह शूटिंग में भारत के पदकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ दोनों भारतीय निशानेबाजों की नजर अब व्यक्तिगत फाइनल पर भी होंगी।
2: यस, द इंडिविजुअल फाइनल इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम नाउ। अलास, आशी चौकसी मिसिंग आउट ऑन द क्वालिफिकेशन टू द फाइनल वॉज अ बिट ऑफ अ हार्ट ब्रेक फॉर इंडियन फैंस, बिकॉज शी वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द सेम इवेंट इन the last Asian Games. Anyhow, from there to another story of a bronze medal that India have just confirmed in squash. The mixed doubles pair of Joshna Chinnappa and Senthil Kumar had made it to the semi-finals. Unfortunately, they went down to their opponents from Hong Kong. And it has been a similar sequence of news coming from racket sports. Lakshya Sen in badminton men's singles in his round one contest went down to former world champion Lokiyan of Singapore, and in table tennis Manush Shah and Yashaswini Ghorpade have lost their respective matches.
1: भाई फेंसिंग की बात कर लेते हैं, कुछ अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए। फेंसिंग में निराशाजनक नतीजे सामने आए। पुरुषों की सेबर टीम क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया के हाथों 25-45 से हार गई है, यानी हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला फाइनल टीम को जापान ने 45-14 से शिकस्त दी। इन दोनों हार के साथ फेंसिंग में इन टीम जो ई टीम इवेंट है इस इवेंट में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है।
2: बट देयर इज गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम द आर्चरी रेंज। इन रिकर्व मेंस धीरज बोमादेवारा हैज सेट अ न्यू गेम्स रिकॉर्ड। ही स्कोर्ड 698 पॉइंट्स आउट ऑफ द पॉसिबल 722 इन द क्वालिफिकेशन और द रैंकिंग राउंड। ही फिनिश्ड नंबर 1 एंड नीरज फिनिश्ड 20th, यशदीप फिनिश्ड 25th, ओवरऑल द टीम फिनिश्ड 2nd। मीनवाइल इन compound women's Chikita Tanipartha was on a roll. She scored 705 points and finished 1st. Jyoti Surekha Venom finished 12th and Pritika finished 20th. Overall as a team, India were tied with China with 2099 points, and in the tiebreaker unfortunately they finished 2nd. However, the good news is that there are more medals to come. The Kabaddi women's final is currently going on, India versus Iran. It has been an explosive start. India are currently trailing by 5-6. It's going to be a match to watch out for. It's for the gold medal.
1: Chalte chalte ek aur khabar de dete hain. Cano sprint mein Bharat ko koi patak nahi mil saka. Mixed cano doubles 500 meter final फाइनल में राजू रावत एल नेहा देवी 2:08.91 के समय के साथ 8वें स्थान पर रहे।
2: But plenty more coming and we will be keeping you updated with every hourly update. We will meet you next at 10:30 PM. Stay tuned to Akashvani.
0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अदिवस 20th edition of Asian Games 2026 being held in Japan. Periodic FM updates. ఈ హార్లో అంటే 9:30కి ఇప్పటిదాకా విన్నారు కదా, మళ్ళీ 10:30కి తిరిగి వినొచ్చు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి ప్రసారం అవుతాయి. మీరంతా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆకాశవాణి రెయిన్బో ఎఫ్ఎం 101.9. స్టూడియోలో టైమ్ ఈస్ రన్నింగ్ అవుట్ లైక్ ఎనీథింగ్. 9:35 దాటి 36 నిమిషాల కోసం పరిగెడుతోంది. మితంగా హితంగా మాట్లాడాలి, మనిషి గౌరవం తెచ్చేవి ఇవే అన్నారు గాంధీజీ. ఎప్పుడూ నవ్వుతూ నవ్విస్తూ మాట్లాడుతూ ఉండాలట. మధుర భాషణం వల్ల మర్యాద లభిస్తుంది. నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతుంది కదా. అందుకే ప్రియంగా మాట్లాడాలి. ఎదుటివారిని ముందుగా మనమే పలకరించడం పూర్వభూషణం అంటారు. రాముడు స్మితపూర్వ భాషి మాట కన్నా ముందు ఆయన చిరునవ్వు ఎదుటివారిని పలకరించేదట. సత్యమే సర్వోన్నతమైంది కనుక నిర్భయంగా సత్యాన్ని పలుకు అంటారు. ఆ సత్యాన్ని ప్రేమగా నేర్పుగా చెప్పాలి, మర్యాదగా హుందాగా మాట్లాడాలి. అటువంటి వాటి కోసం వింటూ ఉండాలి ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం 101.9 MHz. ఇప్పుడు ఒక వండర్ఫుల్ ట్రాక్ అండి, మ్యాడ్ సినిమాలోంచి శ్రీచరణ్ పాడిన ఈ పాట మీ అందరి కోసం.

0: समय बदलाव लाता है, लेकिन यदि हम में बदलाव नहीं आता तो हम अतीत की बात बनकर रह जाएंगे। वक्त हो चला है सुबह के 10:04 और इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गाने के साथ। और गाने के साथ साथ मेरे साथ भी है अभिज्ञा, जो हमें बहुत सारे गाने और गुफ्तगू करवाएंगी।
1: Yes, very good morning, listeners. We have tuned very amazing Western music for you. So the first song is Snake It Off from Taylor Swift. Please listen and enjoy.

ऑनेस्टली टू नमस्ते, हेलो आदाब। और दोस्तों, हम ढेर सारे गानों के साथ साथ बातें भी कर रहे हैं। वेल, ये सेगमेंट चल रहा है वेस्टर्न म्यूजिक का, एंड वेस्टर्न म्यूजिक में हमने बहुत सारे गाने क्यूड अप किए हुए हैं। एंड इट्स 10:20 एट स्टूडियो क्लॉक, और आप अगला गाना जो सुनने वाले हैं, प्लीज फॉरगिव मी फ्रॉम ब्रायन एडम्स, एंड देयर आफ्टर वी हैव विंड ऑफ चेंज स्कॉर्पियंस। तो यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद।

0: That was a bit of change, and now it's time for the updates of 20th edition of Asian Games 2026 being held in Japan.
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं दर्पण तिकिया। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं। भारत ने आज सुबह 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने खाते में जोड़ लिया, जिसमें एक रिकॉर्ड बना। 44 साल बाद भारत ने मैराथन में पदक जीता। जी हाँ, भारत के सावन बरवाल ने मेंस मैराथन 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड में समाप्त करके सिल्वर मेडल जीत लिया। ये एक नेशनल रिकॉर्ड भी है जो उन्होंने बनाया है।
2: And in case you missed out on our first update, Joshna Chinnappa and Senthil Kumar in squash mixed doubles have won a bronze medal, and the other silver medal has come from the shooting range, where in the 50 meter three position, the trio of Ashi Choksi, Tilotuma Sen, and Vidarsha Vinod have won the silver medal in the women's team event. The individual event also just came to an end.
1: Ji, bilkul, mahilaon ki 50 meter three position, yani three शूटिंग स्पर्धा में भारत को व्यक्तिगत पदक नहीं मिल सका। तिलोत्तमा सेन चौथे स्थान पर रहकर पदक से चूक गई, जबकि विदर्शा विनोद पांचवें स्थान पर रही। तिलोत्तमा का 9.4 का शॉट उनके लिए भारी पड़ा और इसी वजह से वो पोडियम पर नहीं पहुंच सकी।
2: बट देयर इज द होप ऑफ अ गोल्ड मेडल व्हिच कुड बी कमिंग इन अबाउट 2 मिनट्स फ्रॉम नाउ। 2 मिनट्स रिमेनिंग ऑन द क्लॉक इन द वुमेन्स कबड्डी फाइनल एंड इंडिया आर अप अगेंस्ट ईरान इन दैट पर्टिकुलर fixture, and India is currently leading by 35-30. Remember, they went into half time with India having a lead of 22-16. However, Iran came roaring back in the second half. However, 2 minutes, a lot of time in kabaddi, anything could happen, so we will keep our eyes on that.
1: जिस तरह से कबड्डी में उठा पटक जारी, जिस तरह से रोमांच बना हुआ, इसी तरह से बैडमिंटन में हमने एक रोमांचक मुकाबला देखा। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला एकल के दूसरे दौर में मलेशिया की वोंग चिंग लिंग को 2-1 से हरा दिया। उन्नति ने पहला गेम 21-14 से जीता, दूसरे गेम में उन्हें कड़ी टक्कर मिली और वह 20-22 से हार गई। इसके बाद मुकाबला निर्णायक तीसरे गेम में पहुंचा। तीसरे गेम में उन्नति ने धैर्य बनाए रखा और 21-19 से गेम जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही उन्होंने महिला एकल के तीसरे दौर में जगह बना ली है। अब उन्नति हुड्डा आज दोपहर 1:30 पर तीसरे दौर में इंडोनेशिया की वरदानी पुत्री कुसुमा के खिलाफ उतरेंगी।
2: Yes, and eyes will also be on PV Sindhu, who will be in action later on. Meanwhile, Ayush Shetty has also won his match in the second round and has progressed further. Remember, the doubles pair of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand will be in action as well. Then, moving on to boxing, a bit of a sad news coming from the boxing ring. Jadumani Singh, a lot of hopes were riding on him, but however, in the men's 55 kilogram category, again, against an opponent from Philippines, he has gone down 3-0. Meanwhile, we are still waiting for the bouts of Kapil Pokhriyal and Priya.
1: जी हाँ, ई स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ई स्पोर्ट्स से भी कुछ अच्छी यानी बेहतर खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से ई स्पोर्ट्स में भारत का प्रदर्शन अब तक रहा, उस पर बात करें तो भारतीय ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी परितोष को पुयो पुयो चैंपियन जो क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार का उनको सामना करना पड़ा, उन्हें डेंगशिन कॉन्ग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-0 से हराया। इस हार के साथ परितोष का टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल का जो सफर था वो यहीं थम गया है।
2: Right, so with that, India now have 2 gold medals, 11 silver, 13 bronze, a total of 26 medal. And as we told you, another gold medal is on the horizon. The women's kabaddi team is in action with 15.

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: Well, it's 11:04 at Studio Clock aur aap sun rahe hain Namaste Hello Aadab aur mere saath Avigniya hai and here we go with the topic where we talk about Zen Zi ka redefining luxury.
1: Dosto, Zen Zi luxury ko sirf expensive nahi purposeful bhi dekh rahi hai. आज बहुत से यंग कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स चूज करते वक्त देखते हैं कि ये ब्रांड एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहा है, वर्कर्स के साथ कैसे

0: बिलीव करता है और प्रोडक्ट कितना सस्टेनेबल है. सो लग्जरी का मतलब सिर्फ हाउ मच डज इट कॉस्ट नहीं रहा, इट कैन ऑल्सो बी वॉट डज इट स्टैंड फॉर. अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट विद अ मीनिंगफुल पर्पस, that's a whole new definition of luxury.
1: Correct. So Zenzi is actually redefining luxury as a personal, purposeful and progressive. Actually, they seek authenticity. उनका खुद का एक एक्सप्रेशन दिखाया जाता है जहां पे दे प्रायोरिटाइज द मीनिंग एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट ओवर द प्रेस्टीजियस थिंग और मेटीरियल पोजेशंस. ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जनरेशन है तो जनरेशन नहीं, बल्कि जनरेशन गैप भी नहीं कहूंगी मैं. वेल बी say that generation has raised on side of hustle and climate consciousness. तो ये जो climate का जो consciousness है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये subconsciously या consciously we have to think about it. What do you say, Abhigna?
0: Yeah, sure.
1: So चलिए next हम गाना सुनते हैं. It's like Love Yapa हो गया and then your favorite song Kalyani.
0: Sure.

0: वेल वेलकम बैक लिसनर्स। हम बात कर रहे थे लग्जरी की। जी हाँ, अब बात करेंगे पर्सनल लग्जरी की। जेंजी के लिए लग्जरी का मतलब जरूरी नहीं है कि एवरीवन हैज द सेम एक्सपेंसिव थिंग्स। समवन मे फाइंड लग्जरी इन अ सोलो ट्रिप एंड समवन इन अ पीसफुल संडे मॉर्निंग एंड समवन इन अ गुड कॉफी। और किसी के लिए लग्जरी हो सकती है अपने पैशन के लिए टाइम निकालना। बेसिकली लग्जरी इज बिकमिंग मोर पर्सनल देन यूनिवर्सल। आपके लिए लक्जरी क्या है? एक्सपेंसिव शॉपिंग या एक पीसफुल स्ट्रेस फ्री डे? क्या कहते हैं आप जमीला जी?
1: मेरे लिए तो पीसफुल है बिकॉज है ना, नाउ डेज जो माइंडफुलनेस की बात होती है एंड
0: राइट
1: वी फील लाइक नो कि जितना शांत रहे उतना
0: हाँ
1: अच्छा है, बिकॉज आसपास इतना सब कुछ चलते रहता है तो एंड ऑफ द डे वी फील लाइक नो कि एग्जॉस्टेड हो जाते हैं. वी फील लाइक नो लॉट ऑफ टैक्सिंग थिंग्स
0: या
1: हैपेंस अराउंड अस, सो इट इज गुड टू हैव अ पीसफुल थिंग, शांत से आराम से एंड साथ

0: साथ एफएम रेनबो सुनते रहना, है ना।
1: ऑफ
0: वो
1: कोर्स
0: एक एक ऐसा आइसिंग ऑन द केक रहेगा जहां पर वे फील कि भाई कोई भागम भाग नहीं है, वी आर
1: या
0: नॉट इन दैट रेस जहां पर, है ना, इस ये बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आराम से हम बात करते हैं और गाने सुनते हैं। तो अगला गाना भी जो है वो भी बस कुछ ऐसा ही है जहां पर हम प्यार को इजहार करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद।

0: वेल दैट वॉज हीर आसमानी बी प्राक और विशाल ददलानी की आवाज़ में ये गाना था एंड इज मोस्टली मोस्टली ये गाना बहुत लोगों को पसंद आता है. इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग ऑल्सो ऑफ इंडिया, हीर आसमानी. तो वेल जब हम आसमान की तरफ देखते हैं और जब इन गानों को सुनते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है. एंड दैट टू इट्स सैटरडे एंड संडे, और जो गणेश विसर्जन के बाद घर जा रहे हैं और या फिर अभी भी ट्रैफिक है और बताया गया है कि दोपहर तक ये चलता रहेगा ये, तो आप हमारे जो भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं तो आप उसी अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिएगा. अपने ट्रैफिक जो टैंक बंड का एरिया है वो अभी भी ट्रैफिक है, तो अपना डाइवर्शन जहाँ पर है वहाँ पर आप ले सकते हैं या फिर कुछ देर बाद आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं. वेल जब हम लग्जरी की बात करते हैं ना अभिन्या, तो जेन ज़ी एक अलग तरह की रीडिफाइन में है, और साथ ही साथ उनका चाहे वो शॉपर्स हो जाए या फिर है ना जो एनर्जी लेवल्स के साथ वो कलेक्शंस देखते हैं, तो वॉट इज योर टेक on that one?
1: तो लग्जरी का फ्यूचर शायद सिर्फ बिगर एंड मोर एक्सपेंसिव होने में नहीं है, बट स्मार्टर एंड मोर मीनिंगफुल होने में है. जेन ज़ी एक्सपीरियंसेस इंडिविजुअलिटी, सस्टेनेबिलिटी और पर्सनल वैल्यूज को इम्पोर्टेंट दे रही है. सो आज का लग्जरी क्वेश्चन सिंपल है, कैन आई अफोर्ड इट से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, डज इट मैटर टू मी, एंड मे बी दैट्स इज द बिगेस्ट शिफ्ट. Luxury is becoming less about showing people what you have and more about expressing who you are and who you value.
0: Correct. Yes. Yeah. So that actually matters also.
1: Yeah.
0: क्योंकि है ना हम कब तक प्रिटेंड करते रहेंगे और कब तक इम्प्रेस करते रहेंगे. सो वॉट वी आर वी हैव टू शो ऑफ, राइट? सो वेल नेक्स्ट गाना जो है इस शिल्पा राव की आवाज में, ये एक ऐसा गाना था जो बहुत ही ट्रेंडिंग रहा उस वक्त पर, अभी भी है वो तो. लेकिन हाँ, जब गाने एक वक्त गुजर जाता है तो गाने का वो जो ट्रेंडिंग ऐसे खत्म हो जाता है. तो वेल उस टाइम पे तकरीबन पिछले 2 साल में ये बहुत ही हिट में रहा ये गाना. तो चलिए दोस्तों, इस गाने को एंजॉय करते हैं. आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए. इट्स 11:24 एट स्टूडियो क्लॉक और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद.

0: दी जाती है, हमारे देश को रिप्रेजेंट किया जाता है वहां पर। हमें ऐसा महसूस होता है कि खेल एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, हर किसी की लाइफ का, जो अपने आप में ही पूरी फुर्ती लाता है। वेल अभिना, जब हम आज जनरेशन के बारे में बात कर रहे थे, हर
1: जी
0: माइंडफुल के बारे में बात कर रहे थे, प्रायोरिटाइज की बात कर रहे थे, कम्युनिटी की बात कर रहे थे, तो
1: जी
0: सेंसिबिलिटी की जो बात है वहां पे गेम्स भी उतने ही मायने रखते हैं,
1: ऑफ
0: स्पोर्ट्स
1: कोर्स,
0: बहुत ज्यादा मायने रखता है।
1: हाँ
0: क्योंकि जितना हम पहला वक्त हुआ करता था जहां पर उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं रहते थे,
1: जी
0: राइट? डू यू एग्री?
1: या जी
0: बट अभी ऐसा हो गया है कि हम इतना डिजिटल के साथ जुड़ जा रहे हैं, इन अ गुड वे ऑल्सो और अ बैड वे ऑल्सो। तो
1: या
0: जहां पर प्रोस और कॉन्स है ही है, लेकिन जब डिजिटल डिवाइस के साथ हम जितना टाइम स्पेंड करते हैं उतना ही हम अपने आप को खराब भी करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं टाइम साइलेंस में चले जाता
1: ऑफ कोर्स,
0: है ना? तो टाइम जो है वो बहुत साइलेंस में चला जाता है, समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम स्पोर्ट्स के साथ जुड़ते हैं, गेम्स के साथ जुड़ते हैं, अपने आप को सोशल मीडिया से थोड़ा सा बाहर लाते हैं और अपने ब्रेन हेल्थ को थोड़ा सा इवॉल्व करते हैं, तो बहुत
1: जरूर
0: अच्छा लगता है। जिस तरह से
1: जी
0: भारत ने गोल्ड मेडल जीता है और जहां पर हम या एक सेरेमनी की तरह फील करते हैं, एक रिटेंशन की तरह फील करते हैं, तो इसी दौर में ही ऐसे खिलाड़ी है जो देश को दर्शाते हैं,
1: जी
0: है ना?
1: हाँ जरूर
0: तो जापान में जाकर जब हमारे एशियन गेम्स 2026 के वहां पर हो रहे हैं और हमें जब अपडेट्स लगता है कि अभी कबड्डी में हमने जीता है
1: जी
0: गोल्ड मेडल, तो इट्स लाइक नो कि वी फील कि भाई वाकई में। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी है जो करना चाहते हैं कर नहीं पाते, मे बी बिकॉज ऑफ
1: या
0: डिजिटल डिवाइसेस। तो नॉट ओनली स्पोर्ट्स, हर फील्ड में हम लोग कुछ कर सकते हैं, करना भी चाहिए और बहुत लोग करते भी हैं। समवेयर जहां पर हम डिजिटल डिवाइस के साथ जुड़ते जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा माइंडफुल चाहिए, अनप्लगिंग
1: जी
0: भी जरूरी है ना?
1: या ऑफ कोर्स
0: चलिए, इट्स 11:51, अब हम गानों का सिलसिला चलाते हैं और 12 बजे अभी ना हमारे पास न्यूज़ है, तो हम न्यूज़ सुनेंगे हिंदी में और इसके बाद में इंग्लिश में। तो 12:10 में हम फिर इसी सेगमेंट में जुड़ेंगे जहां पर हम गाने सुनेंगे, नमस्ते हेलो आदाब के सेगमेंट में। और आज हम देवानंद जी के बारे में बात
1: जी
0: करें,
1: हाँ,
0: तो
1: देवानंद जी की स्पेशल है आज का सेगमेंट।
0: जहां पर हम 12 बजे से, मतलब 12:10 से 1 बजे तक हम अभिज्ञा के साथ बहुत सारा कंटेंट लेकर आई है आप सबको सुनाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देवानंद के अदाओं पे बहुत फिदा है। तो उसने कहा कि
1: जी
0: नहीं जमीला, आज हम यही प्ले करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, आज सैटरडे का मूड भी है और जो थके थके हैं वो भी ये गाना महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, हम आपको इसी तरह से एंटरटेन करते रहेंगे। बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद।

के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन।

0: एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will address the high-level session of 81st United Nations General Assembly in New York today. The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme

0: वेल, इट्स 12:11 एट स्टूडियो क्लॉक, और दोपहर का वक्त हो चुका है जहाँ पर हम अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं। वक्त के उस पड़ाव पर है जहाँ पर हम अपने आप से जुड़ते हैं, कुछ खाने का, कुछ अपने साथ बिताने का वक्त। जी हाँ, ये सेगमेंट में हम वो गाने सुनाते हैं जो हमें अपने रूट्स के साथ, अपनी पुरानी यादों के साथ या फिर अपने इकरार के साथ जोड़ती है। वेल, अभी ना जैसे मैंने गानों से पहले और न्यूज़ के पहले भी बताया था कि
1: जी
0: अभिज्ञा है ना, वो देवानंद जी को बहुत पसंद करते हैं। उनके मतलब वो जो म्यूजिकल मैजिक रहता है ना, उसे वो महसूस करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज हम वही गाने प्ले करते हैं। वेल, कहा जाए तो ये एक एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर हम पूरे सदाबहार गाने सुनाते हैं, एवरग्रीन गाने सुनाते हैं। और पता है, अभिज्ञा देवानंद जी को तो मैं कहूंगी कि वो है ना किंग है,
1: जी
0: एवरग्रीन
1: ऑफकोर्स
0: किंग के नाम से जाना जाता है रहा उन्हें इंडियन सिनेमा के लिए। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं,
1: जी
0: जैसे तुम भी कह रही थी ना अभी ना जाओ छोड़कर, वो जो गाने हैं ना, वो आज भी वो अल्फाज, वो लिरिक्स याद है। कितने भी जनरेशन बदल जाए
1: हाँ
0: है ना, अल्फा आ जाए, बीटा आ
1: हाँ
0: जाए, मिलीनियर आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो
1: हाँ
0: गानों के जो अल्फाज है वो अभी भी है।
1: हाँ जी हाँ, उनकी एक खास बात थी, वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो ए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, एंड थ्रू नवकेतन फिल्म्स ही एंकरेज न्यू टैलेंट एंड एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिनेमा। और उनका स्टाइल था दैट वॉज फेमस स्माइल, द स्लाइटली टिल्टेड कैप, द एनर्जेटिक वॉक और वो यूनिक डायलॉग डिलीवरी। आज के स्पेशल सेगमेंट में हम याद करेंगे देवानंद साहब को, उनके सिनेमा, उनके स्टाइल और उनके अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स के थ्रू। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए बिकॉज दिस इज अ देवानंद स्पेशल ऑन FM रेनबो, ओनली ऑन 101.9 आकाशवाणी हैदराबाद।
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वेल, अभी जिस तरह से आपने बताया कि ये जो सेगमेंट है बहुत ही स्पेशल हो रहा है, तो सबसे पहले हम सुनते हैं 1961 में रिलीज हुई फिल्म, हम दोनों फिल्म का ये गाना, जो कि बहुत ही रोमांटिक ड्रामा रहा है। और इसमें खुद उन्होंने जैसे प्रोडक्शन कहा था, वो प्रोड्यूसर भी
1: जी
0: रहे इस फिल्म के, देवानंद जी, और नवकेतन फिल्म्स प्रोडक्शन रहा था यहाँ पर। ये गाना बहुत ही खूबसूरत, अभी आज भी अगर ये गाने को हम कहा कहेंगे कि कोई किसी को छोड़ने जा रहा है तो कहेंगे कि मत जाओ, तो वो जो अल्फाज है, वो जो लिरिक्स है, आप महसूस कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद।

0: Well, that was a beautiful track, और जब खोया खोया चांद और वो जो प्रेजेंस रहा है वो बहुत ही खूबसूरत रहा है। पर अभी ना इन्होंने देव साहब ने नहीं फिल्म इंडस्ट्री देव साहब के नाम से भी जानती ही
1: जी
0: है, और उन्हें जो खिताब मिला है वो इज लाइक नो कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर रहे हैं
1: जी हाँ,
0: हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में।
1: ऑफ कोर्स जी हाँ। आज का दिन बॉलीवुड के उन फैंस के लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज टुडे वी रिमेम्बर अ मैन हु स्टाइल, स्माइल, वॉइस एंड स्क्रीन प्रेजेंस क्रिएटेड अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ स्टारडम। 26 सितंबर मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देवानंद साहब। Born on 26 September 1923, Devanand went on to become one of the Hindi cinema's most recognizable stars, with a career spanning more than 5 decades and over 100 films.
0: करेक्ट। हाँ, तो 100 से भी ज़्यादा फिल्में इन्होंने की है, और इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं, पद्म भूषण मिला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है। तो सोचिए कि जो काम करने का जो जज्बा है, 1946 में इन्होंने शुरू की थी फिल्म हम एक हैं, वहाँ से उनका डेब्यू शुरू हुआ, और 2011 तक उन्होंने चार्जशीट फिल्म की, जो कि इतना लंबा अरसा, और उस अरसे में भी बहुत कुछ अदाएं और बहुत कुछ सीखने को मिला। जब उनकी अदाएं, उनका जो स्टाइल देखा जाता है, जब वे भी जो जिस तरह से वो चलते हैं,
1: जी
0: तो ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी तो बस ऐसे ही है,
1: हाँ
0: धुआं है ना। तो इसी राह पर, और जब हम इसी बातों पर याद करते हैं उन्हें, तो ये गाना तो जरूरी बनता है। तो चलिए हम ये गाना सुनते हैं, गाता रहे मेरा दिल।
1: यार, दिस
0: तो
1: माय
0: चल
1: फेवरेट।
0: तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद।

0: तो दोस्तों 12:30 बज रहे हैं और अभी आप कुछ ही मिनटों में 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स का अपडेट सुनेंगे जो कि 2026 जहां जापान में हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद।
1: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं दर्पण तिकिया। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर के साथ, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल

0: जीत लिया। जी हाँ, फाइनल में ईरान को 37-34 से शिकस्त दे दी। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फाइनल में भारत ने ईरान को जिस तरह से हराया, उठा पटक वाले मुकाबले में, जो मुकाबले के पहले आपकी बात करें तो भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की, 22-16 से बढ़त के साथ ब्रेक पर गई। दूसरे हाफ में ईरान ने जोरदार वापसी की और भारतीय टीम पर दबाव बनाए रखा। एक समय ईरान ने स्कोर को 27-26 तक पहुंचा दिया था। इस दौरान भारतीय टीम ऑल आउट भी गई। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम ने टाइम आउट के बाद अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया और मुकाबले को दोबारा अपनी पकड़ में बना लिया। खासकर आखिरी 5 मिनट में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और ईरान को वापसी का कोई भी मौका नहीं दिया। भारत ने अंततः मुकाबला 37-34 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। एशियन गेम्स में चौथी बार है जो भारतीय टीम चैंपियन बनी थी। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में 2018 को अगर छोड़ दें, जकार्ता पलमबाग में जब एशियन गेम्स हुए थे, वहां न भारतीय महिला टीम ने न पुरुषों ने किसी टीम ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। वहां पर भारतीय टीम को शिकस्त मिली थी फाइनल मुकाबले में। उसके बाद से कोई भी मौका नहीं जब भारतीय टीम फाइनल न जीती हो। वहीं आज पुरुषों का कबड्डी में फाइनल मुकाबला ईरान से ही होगा, जब भारतीय टीम स्वर्ण पदक के लिए जोर आजमाइश करेगी। इसके अलावा बात करें तो कई और बड़े मुकाबले आने बाकी हैं दर्पण।
1: Absolutely. So one gold done in Kabaddi, the other one is awaited. However, it has been raining medals from all corners. First of all, the day started with a historic silver medal that was won by Savan Barwal in the men's marathon. Then we had another medal coming from the world of shooting, where in 50 meter three position rifle team event, the women's team event, the trio of Ashi Choksi, Vidarsa Vinod and Totally Masane won the silver medal. Then we had Joshna Chinnappa and Senthil Kumar in mixed doubles in squash winning the bronze medal for India. And now a couple more medals have been confirmed in squash. Anahat Singh, just a few moments from now, had defeated her Japanese opponent in a semi-final where she was pushed to the brink. She lost the first two games and then averted 3 match points and came roaring back to win 3 games on a trot and enter the finale. She is now assured of at least a silver.
0: जी हाँ, स्क्वैश की बात कर लेते हैं। भारत के अभय सिंह ने एशियन गेम्स के जो पुरुषों के एकल स्क्वैश में फाइनल में जगह बना ली। जी हाँ, फाइनल सेमीफाइनल जो मुकाबला था वहां पर अभय ने पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को सीधे गेमों में 3-0 से हराया। निर्णायक तीसरे गेम में अभय ने 11-6 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अभय का गोल्ड मेडल मुकाबला तय हो गया है, यानी कम से कम सिल्वर मेडल भारत के पास आना तय है।
1: राइट, सो गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम स्क्वॉश टू, एटलीस्ट सिल्वर्स आर कंफर्म्ड। वी विल होप दैट बोथ ऑफ देम गेट कन्वर्टेड इनटू गोल्ड मेडल्स। हाउएवर, करंटली पीवी सिंधु इज इन एक्शन। इन फ्रंट ऑफ हर इज चाइनीज ताइपेज चिउ पिंचियान, हु इज रैंक्ड 17th इन द वर्ल्ड। रिमेंबर, सिंधु इज ranked 11th in the world. After a grueling first game, Sindhu was able to win it 21-19. The second game is currently going on and Sindhu is leading by 15-11. Ayush Shetty, who earlier won his second round match today, will be featuring in the third round against Chinese Taipei's Chao Tin Chen, who is, we all know, a big name. He has already 3 Asian Games medals to his name, so that will be a grueling fight.
0: वही बैडमिंटन में ही उन्नति हुड्डा महिला एकल के तीसरे दौर में और आयुष शेट्टी पुरुष एकल के तीसरे दौर में अपनी चुनौती पेश करने वाले हैं।
1: Right, and then in the world of boxing, we have some good news coming. Kapil has won his bout, hasn't he, Shahid?
0: जी बिल्कुल, भारत के कपिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सैम एस्ताकी को 5-0 से हराकर एशियन गेम्स की बॉक्सिंग स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। कपिल ने पूरे मुकाबले में दबाव बनाए रखा और आखिरी राउंड में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई मुकाबला जीतने के लिए। कपिल का क्वार्टर फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा।
1: Right, and in the world of archery, the recurve women's team have qualified at the 7th position in the qualifying round. Of course, these are just the ranking rounds to decide how the fixtures would be laid out. And the trio of Kirti, Ankita Bhakat and Kumkum Mohod have had a mixed performance. Similar results in the compound men's team, where the team finished 3rd. However, our expectations are lofty from Sahil Rajesh Jadhav, Maniratnam Ganesh and Kushal Dalal. Hopefully, they will come roaring back when the actual competition starts.
0: जी बिल्कुल, मुकाबला इधर चल रहा है, सामने हमारे बिल्कुल खेल रही है पीवी सिंधु हालांकि अभी आगे बनी हुई लग रहा है, यहां पर सिंधु जीत जाएंगे। हालांकि पहला गेम उन्होंने जीता है, दूसरे गेम में 18-11 से आगे चल रही है। अगले एक घंटे में क्या कुछ होगा, आज अब से ठीक एक घंटे बाद 1:30 पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और दर्पण तिकिया को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

वेल वेलकम बैक लिसनर्स। तो दोस्तों, अब वक्त है एक ब्यूटीफुल थॉट का। देवानंद साहब पास्ड अवे इन 2011, बट देयर फिल्म्स, सॉन्ग्स एंड स्क्रीन प्रेजेंस कंटिन्यू टू रिमेन पार्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर, और परहैप्स इसी को कहते हैं एवरग्रीन। एवरग्रीन होने का मतलब सिर्फ यंग दिखना नहीं होता, इट मीन्स योर वर्क कंटिन्यूज टू कनेक्ट विद द पीपल इवन आफ्टर द डिकेड्स। आज एक जनरेशन उनके फिल्म्स को नॉस्टैल्जिया के साथ देखती है और यंगर ऑडियंस उनके स्टाइल, सॉन्ग्स और कैरेक्टर्स को डिस्कवर कर रही है। फ्रॉम गाइड टू ज्वेल थीफ, CID, काला बाजार, जॉनी मेरा नाम एंड मैनी मोर, देवानंद फिल्मोग्राफी कवर्स डिफरेंट मूड्स एंड जनर्स। तो आज देवानंद साहब को याद करते हुए बस इतना कहते हैं, कुछ स्टार्स वक्त के साथ पुराने हो जाते हैं और कुछ स्टार्स वक्त के साथ क्लासिक्स बन जाते हैं। देवानंद साहब बिलोंग्स टू द सेकेंड काइंड। मैं हूं आपकी अजय अभिज्ञा और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ है रंगीन।

0: वेल हियर इज अ नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
1: हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे?
0: जी हाँ. आपका नाम?
1: मेरा नाम विलास पेनुरकर है, नल्ला पुंटा भाग्यनगर से बोल रहा हूँ.
0: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो रेनबो में. आज का टॉपिक आपने सुना है?
1: हाँ जी, मैंने सुना है. आज का विषय है, हमको साधारण जीवन जीना अच्छा लगता है या ऐशो आराम का जीवन जीना अच्छा लगता है, यही है ना?
0: जी हाँ भाई.
1: हाँ, तो ये सामान्य जीवन और ऐशो आराम का जीवन हमारे मानने के ऊपर है. हम जो विचार करते हैं ना,
0: जी.
1: हम अगर से विचार करते हैं कि मेरे पास में अभी एक कार है तो काफी है, एक
0: जी.
1: स्कूटर है तो काफी है, एक सदनिका यानी कि एक फ्लैट है तो काफी है. हम अगर से विचार करते हैं कि ये जितना है उतना काफी है तो
0: जी
1: सब ठीक है, नहीं तो इसके लिए कोई अंत नहीं है.
0: जी जी
1: अभी एक
0: जरूर.
1: कार है तो हम विचार करते हैं और एक कार लेना है, और एक अगर से दुपहिया वाहन हमारे पास में है तो हम विचार करेंगे और एक दुपहिया वाहन, या वो नया इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाला वाहन आया है उसको लेंगे, एक
0: जी
1: सदनिका है तो और एक सदनिका खरीदेंगे. तो इस प्रकार के जो विचार हम अगर से रखते हैं तो
0: जी
1: वो क्या है कि ऐसे आराम की जिंदगी जीना, लेकिन उसमें हमको समस्या हो सकती है.
0: जी
1: हम
0: जरूर
1: केवल पैसा कमाने के पीछे लग जाते हैं, और
0: बिल्कुल
1: एक साधारण जीवन अगर से हम जीते हैं तो उसमें हमको अच्छा आनंद प्राप्त होता है.
0: जी. बहुत अच्छी बात कही है आपने. थैंक यू फॉर कॉलिंग.
1: धन्यवाद.
0: जी धन्यवाद. लेट्स डाइव इनटू अवर नेक्स्ट ट्रैक. सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, it's time at studio is 150 और हम अभी आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं. तो वेल अभी ना बहुत सारे कॉलर से बात हुई हमारी.
2: जी हाँ.
1: तो वेल मैं जानना चाहूंगी कि जब लक्जरी, जब मैंने बताया था कि मुझे तो मतलब बिल्कुल शांत माहौल चाहिए.
2: जी हाँ.
1: पीस ऑफ माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है. तो वेल आप क्या कहते हो कि व्हाट डू यू से?
2: सेम. जी हाँ, वही. सिंपल लाइफ इज द बेस्ट थिंग.
1: बेस्ट थिंग. वेल आजकल जिस तरह से हम लग्जरी का डेफिनेशन है, हर किसी के लिए अलग अलग होता है. हमारा एक जेनरिक थॉट है. हम यहाँ पे किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि लग्जरी आपके लिए ये है और हमारे लिए ये है. तो ये

0: बहुत जेनरिक है, अपने अपनी सोच पे डिपेंड करता है और अपने अपने ख्याल, अपने अपने तजुर्बे पे भी डिपेंड करता है। किसी के लिए इतनी मेहनत करने के लिए बात कुछ पाना वो एक लक्षरी है, किसी के लिए कुछ ना कर कर कुछ पाना वो भी एक लक्षरी है। तो वेल,
1: जी
0: हर किसी की सोच को हम मायने रखते हैं। तो आज का सेगमेंट बहुत ही अच्छा रहा, बहुत
1: जी
0: ही सारी
1: हाँ
0: जानकारी मिली हमें। तो चलिए, इसी नोट के साथ हम आप सब लिसनर से विदा लेते हैं। तो
1: जी
0: यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद।
1: जी हाँ सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो। हम दोनों आपसे अलविदा लेते हैं, पर आप कहीं मत जाइएगा। जश्नी हैदराबाद के साथ आज जे लकी जी आपका इंतजार कर रही है। तो सुनते रहिए 101.9 FM रेनबो, 101.9 FM रेनबो, क्योंकि FM के साथ, रेनबो के साथ है लाइफ, रंगीन है। सुनते रहिए।

0: జపాన్ లో ప్రారంభమైన 20వ ఆసియా క్రీడల అప్డేట్ ఇప్పుడు వింటారు.
1: గేమ్స్ 2026 ఐచీ నగోయా.
2: Japan is that India are 12th on the medals table with 3 gold medals, 11 silver medals and 13 bronze medals, a total of 27 medals. Out of these, 4 have come today. Of course, we have been telling you how the women's team won the silver medal in the 50 meter 3 position rifle, that is shooting. Then we also told you how the mixed doubles pair of Joshna Chinnappa and Senthil Kumar won the bronze medal in squash, and we have also been telling you how India won a historic silver medal in the men's marathon and a historic gold medal in women's kabaddi. As we speak, the men's kabaddi team is beginning their gold medal match against Iran, and we are hoping for nothing less than another gold medal. Will the Indian men's team also be able to clinch the top position? We will know soon. I am Darpan Sikya, and joining me is Mohammed Shahid Azmi.
3: जी दर्पण, एक अभी भी नतीजा सामने आ रहा है. मुक्केबाजी में भारत की प्रिया ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की. जी हाँ, मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम वर्ग में जो राउंड ऑफ 16 का मुकाबला था, भारत की प्रिया का सामना रिपब्लिक ऑफ कोरिया की यूएनजी ओ से हुआ था, जहां पर प्रिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां पर मुकाबला जीत लिया है और अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है. दूसरी तरफ एक और मुकाबला चल रहा है जहां भारतीय टीम ने अभी भी एक और गोल करके 2-0 की बढ़त बना ली है. जी हाँ, पुरुष हॉकी में भारत बनाम जापान मुकाबला जारी है, जहां भारत ने पहले हाफ में एक गोल किया था और बढ़त बनाई थी. यह गोल 15वें मिनट में अभिषेक ने किया था. जब अंतिम क्वार्टर शुरू हुआ, यहां पर भारत ने एक और गोल करके मुकाबले में 2-0 की बड़ी और महत्वपूर्ण बढ़त बना ली है.
2: राइट, जापान आर कंसिडर्ड द रियल चैलेंजर्स टू इंडिया. हाउएवर, टॉकिंग अबाउट पल्सेटिंग एक्शन, देयर हैज बीन नथिंग मोर पल्सेटिंग देन द डबल्स बैडमिंटन मैच बिटवीन इंडियाज गायत्री गोपीचंद एंड ट्रीसा जॉली वर्सेस जापान्स फुकुशिमा एंड Matsumoto. It went down the wire. We had the first game which lasted over half an hour and it ended up 24-22 in the favor of the Indian pair, and then the second set was also enthralling. 21-18 the scoreline there, the Indian team winning. Before that, we told you that PV Sindhu won her match. She is now going to face Japan's Tomoko Miyazaki in the third round, and currently as we speak, Ayush Shetty in men's singles third round is in action against Chao Tin Chin of Chinese Taipei. He's leading the first set by 2-1.
3: एक और बैडमिंटन की खबर बता देते हैं. उन्नति हुड्डा का बड़ा उलटफेर देखने को मिला बैडमिंटन कोर्ट पर. जिस तरह भारत की युवा स्टार उन्नति हुड्डा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जो उन्नति ने वर्ल्ड नंबर 6 इंडोनेशिया की पुटी कुसुमा वरदानी को सीधे गेमों में हराकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली है. पहले गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन उन्नति ने दबाव के बीच बेहतरीन संयम दिखाते हुए 21-19 से गेम अपने नाम किया. दूसरे गेम में भारतीय खिलाड़ी ने अपनी लय को मजबूत किया. उन्नति ने आक्रमक खेल के साथ वरदानी पर लगातार दबाव बनाए रखा और 21-13 से दूसरे गेम को जीतकर मुकाबला 2-0 से अपने नाम कर लिया. इसके साथ ही उन्नति ने अगले दौर में अपनी जगह हासिल कर ली है.
2: We will hope that Unnati gets a lot more Unnati for India. By the way, did we tell you, in case you missed our earlier updates, let us remind you that 2 more medals are confirmed for India in squash. Earlier today in the women's singles semi-final, Anahat Singh staged a sensational comeback. She lost the first 2 games, then averted 3 match points to win against the Japanese opponent. Meanwhile, Abhay Singh in the men's singles defeated Pakistan's Mohammad Irfan to enter the final. So both of these players are in the final and are assured of a silver. And just as we speak, India have earned another penalty corner against Japan in the men's hockey match. Meanwhile, in the kabaddi arena, on the kabaddi mat, it is a seesaw battle. We are still into the starting few minutes and India and Iran are going toe to toe with each other. Currently, Iran leading by 3-2.
3: जी, और सुबह के मुकाबलों कुछ अपने श्रोताओं को जानकारी दे दे। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन से उम्मीद थी कि पुरुषों के मुकाबले में कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन एकल मुकाबले में सिंगापुर के लो किन यू से 12-21, 21-15, 14-21 से हार गए। वहीं बॉक्सिंग में कपिल पोखरिया ने 90 किलोग्राम वर्ग में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में ईरान के सैम एस्टास्की को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह हासिल कर ली। वहीं बॉक्सिंग में ही जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस के कार्लो बालम से हार गए हैं।
2: Right, we will be giving you all the updates as and when we have them. Keep tuning into Akashwani. We'll meet you again at 3:30 p.m.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.

0: शून्य कर दिया। भारत ने इस बढ़त को अंत तक कायम रखा और जापान को कोई भी गोल करने का मौका नहीं दिया। भारत पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुका है, यानी जिस तरह से शुरुआत की थी, जिस तरह जीत के रथ पर भारतीय टीम सवार है, उसी तरह लगातार आगे बढ़ती जा रही दर्पण।
1: एंड दैट इज इम्पोर्टेंट एज वेल, बिकॉज रिमेंबर यू डू नॉट जस्ट वॉन्ट द गोल्ड मेडल बिकॉज इट सूट्स योर प्राइड, यू ऑल्सो वॉन्टेड बिकॉज विनिंग अ गोल्ड मेडल हेयर मीन्स अ डायरेक्ट टिकट टू द LA 28 ओलंपिक्स, दैट क्वालिफिकेशन इज एट स्टेक। मीनवाइल इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन देर हैज बीन अ लॉट हैपनिंग, वी हैव हैड सम टेरिफिक मैचेस, वन ऑफ विच इज करंटली गोइंग ऑन बिटवीन इंडियाज आयुष शेट्टी एंड Chinese Taipei's Chow Tin Chin, and the Chinese Taipei shuttler won the first set. However, India Shetty came roaring back to win the second one. The third one is currently going on. Apart from that, let us also tell you that Unnati Hooda in the women's singles third round defeated her Indonesian opponent. PV Sindhu also has made it to the third round, and in a few moments from now, she will be locking horns with Japan's Tomoko Miyazaki. So a lot happening in badminton also today.
0: बिल्कुल, उम्मीद करेंगे पीवी सिंधु वहां भी जीते, लेकिन बात मुक्केबाजी की करेंगे। मुक्केबाजी में भारत की प्रिया घंघास ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में दक्षिण कोरिया की योनजी ओ को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह हासिल कर ली है। क्वार्टर फाइनल में प्रिया का सामना ताजिकिस्तान की मिजगोवा समदोवा से होगा, जो एशियन गेम्स 2022 की कांस्य पदक विजेता है। यहां पर प्रिया घंघास को अपने लय को बरकरार रखना होगा, और अगर यहां जीतती है प्रिया घंघास तो पदक उनका पक्का हो जाएगा।
1: मीनवाइल The evening session in athletics has begun. It has been raining all day in Nagoya, and hence the Nagoya Athletics Park, the track over there, is drenched. We also told you earlier how the cricket matches were washed off today. India were obviously not playing today, but the men's cricket matches got washed off due to this rain, and the same rain has affected athletics as well. However, India's Tejaswin Shankar and Taufik Noshad are competing in decathlon. They competed in 3 events in the morning. Currently, the long jump event is going on, in which I will be happy to tell you that Taufik Noshad has cleared 1.85 meter, and a few more events in athletics are lined up.
0: ये बिल्कुल बाधा दौड़ में हम दो महिलाओं को, भारतीय महिला खिलाड़ियों को देखेंगे। ज्योति यारा जी 100 मीटर बाधा दौड़ में दौड़ती नजर आएंगी, वहीं नंदिनी कोंग भी 100 मीटर बाधा दौड़ में दौड़ लगाती हुई दिखेंगी। वहीं शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर जो हैट्रिक लगाने के लिए उतरेंगे, उनको भी हम देखेंगे। वहीं महिला एथलीट में 200 मीटर में हरित भद्रा, जो अभी भी इंडिया ओपन का फाइनल जीत के गई, उन्हें भी 200 मीटर में दौड़ते हुए देखेंगे।
1: राइट, एंड वी विल बी बैक विद मोर अपडेट्स इन एन आवर्स टाइम। वी विल लीव यू विद द अपडेट दैट इंडियाज मेन कबड्डी टीम इज लीडिंग बाय 39-32, 48 सेकंड्स रिमेनिंग on the match clock. We'll meet you again at 4:30 p.m.
2: Asian Games 2026, IG Nagoya.

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: జపాన్లో ప్రారంభమైన 20వ ఆసియా క్రీడల ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఇప్పుడు వింటారు.
1: Good evening, I am Darpan Tiki. Alongside me is Mohammad Shahid Azmi and we are here to give you the latest what is happening at the 20th Asian Games. We started the day off with a historic silver medal coming in men's marathon. After that, there was a silver medal which came from the shooting range, a couple of gold medals at the Kabaddi match and obviously a bronze medal in squash. And now we are back to athletics where at the Nagoya Athletics Stadium, it is rainy, it is pelting down, the track is slippery, it is damp, it is wet, yet the athletes are giving it their all. There have been a couple of unfortunate instances. Praveen Chitravel, India's athlete who was attempting was making his first attempt in the men's triple jump, unfortunately pulled off his hamstring. Jyoti Yaraji, who was supposed to be in women's 100 meter hurdles, did not start. However, despite the disappointment, there is plenty of good news too, and Mohammad Shahid Azmi will give it to you.
2: Ji bilkul, Bharat ke jo star dhavak Animesh Kujur, unse ummeed bhi thi ki behtar pradarshan karenge. Ha, unka favorite event hai 200 meter. 200 meter ke final mein jagah unhone pakki kar li hai. फाइनल में अनिमेश ने 20.81 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया है. उनसे आगे थाईलैंड के पुप्रिल बुनसन रहे, जिन्होंने 20.10 सेकंड का समय के साथ नया गेम्स रिकॉर्ड कायम कर दिया है. इस शानदार प्रदर्शन के साथ बुनसन और अनिमेश दोनों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है. अनिमेश के लिए अब फाइनल में पदक जीतने की चुनौती होगी. वही महिलाओं की बात कर लेते हैं, 200 मीटर में भारत की स्टार धाविका हरिता भद्रा, जिन्होंने अभी इंडिया ओपन में माल किया था, उन्नति बोलैंड के साथ उन्होंने फाइनल में जगह पक्की कर ली है. डबल पोडियम में उम्मीदें उन्होंने बढ़ा दी हैं. हरिता भद्रा ने अपनी हीट में 23.31 सेकंड का समय निकालते हुए दूसरा स्थान हासिल किया. वहीं पर उन्होंने इसके साथ ही सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया. इसके बाद उन्नति बोलैंड ने तेज हीट में तीसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल का टिकट कटाया. अब महिला 200 मीटर में फाइनल में भारत की दो धाविकाएं पोडियम पर जाने के लिए जद्दोजहद करती नजर आएंगी.
1: एंड मीनवाइल इन द शॉट पुट इवेंट, मेंस शॉट पुट, ऑल आईज आर ऑन तेजिंदर पाल सिंह तूर. रिमेंबर ही वन बैक टू बैक गोल्ड मेडल्स इन 2018 एंड 2023. ही इज डिफेंडिंग हिज गोल्ड मेडल एंड द लेटेस्ट फ्रॉम दैट इवेंट इज दैट हिज बेस्ट थ्रो has been 20.64 meters far. Unfortunately, that won't be good enough to fetch him a gold medal, but he is firmly in the silver medal position. It was Iran's Mohammad Reza Tayabesi who threw the shot put 20.81 meters far and therefore established a new games record. We still do not have the official results, but Tejinder Pal finds himself in the silver medal position over there.
2: ये वही तेजिंदर पाल सिंह तूर हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में लगातार दो बार गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास गढ़ा है. 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में तूर ने 20.75 मीटर का शानदार थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. इसके बाद 2022 के हांगझाऊ एशियाई खेलों में उनका दबदबा कायम रहा था. तूर ने 20.36 मीटर की दूरी नापी थी और लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों में यानी एशियन गेम्स में गोल्ड

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Welcome to the hourly updates from the 20th Asian Games, and the conversation has been surrounding athletics, the crown jewel of multi-sport competition. Over the last couple of updates, we told you that it has been raining down in Nagoya and hence the track is wet, it is slippery, it is drenched in water, and yet some of the athletes have done some terrific work to give India a lot of laurels, and none bigger than Tajinder Pal Singh Tur.
2: बिल्कुल, तजिंदर पाल सिंह ने कमाल का प्रदर्शन किया है और लगातार तीसरे एशियन गेम्स में उन्होंने पदक जीत लिया है। भारत की स्टार शॉटपुटर तजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियन गेम्स में आज जिस तरह प्रदर्शन किया है, सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया, अपने उस जो लय थी उसको लगातार बनाए रखा। तजिंदर पाल सिंह तूर का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो था, वो 20.64 मीटर का थ्रो रहा और पोडियम पर जगह पक्की की बनाई। मुकाबले में ईरान के मोहम्मद रेजा तैबिसी 20.81 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि सऊदी अरब के मोहम्मद टोलू ने 20.48 मीटर के प्रयास के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। भारत के एक और एथलीट करणवीर सिंह 18.40 मीटर के थ्रो के साथ 10वें स्थान पर है। खास बात यह है कि भारत ने पिछले दो एशियन गेम्स में पुरुष शॉटपुट का गोल्ड मेडल जीता था, इस बार तेजिंदर पाल सिंह तूर ने सिल्वर मेडल हासिल किया। भारत ने इस स्पर्धा में लगातार तीसरे एशियन गेम्स में, जैसा मैंने बताया, पदक जीता है। तूर ने इससे पहले 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में 20.75 मीटर थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद 2022 के हांगझो एशियन गेम्स में तूर ने 20.36 मीटर की दूरी नापी और लगातार दूसरी बार गोल्डन बॉय बने थे। आपको यह भी बता दें, तूर जो कि 6.4 फीट एक लंबे हैं, 31 वर्षीय तेजेंद्र पाल तूर का जो बेस्ट थ्रो है 21.77 मीटर है, जो 2023 में बनाया था। हालांकि अगर उसके आसपास पहुंचते तूर तो यकीनन गोल्ड भी जीत लेते।
1: Right, and guess what? That is not the only good news that is coming from the athletic stadium there in Nagoya. Another medal has been confirmed by Prachi Chaudhary of India. Prachi has won the bronze medal in the women's 400 meter, where she ran her race in a time of 53.21 seconds. And Prachi Chaudhary, who comes from Western UP, she comes from Saharanpur, has found herself on the podium. Another P. Chaudhary who comes from the same area, we are going to talk about Parul Chaudhary, who will be in action very soon. She won two gold medals in the previous Asian Games, and therefore we have our eyes on her. Her and Pooja will be competing in the women's 1500 meter final, which begins in about 10 minutes from now.
2: इन दोनों खिलाड़ियों ने जो दिल्ली में जो अभी हाल ही में खत्म हुआ इंडिया ओपन का फाइनल, वहां पर विश्वास जताया भी था कि हम एशियन गेम्स में जीतेंगे, पोडियम फिनिश करेंगे, जिसमें से एक खिलाड़ी ने जीत लिया, दूसरी खिलाड़ी फाइनल में मध्य मुकाबिल होने वाली है। एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में भारत का आज का दिन था बेहद शानदार था। भारत के खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। पुरुष डेकथलॉन में पहले दिन के बाद तेजस्विन शंकर शीर्ष स्थान पर है, जबकि तौफीक नौशाद 8वें स्थान पर रहे। और पुरुषों के 200 मीटर में, जैसा हमने बताया था, अनिमेश कुजूर ने अपनी हीट में दूसरा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई, जबकि महिलाओं की 200 मीटर में हरिता भद्रा और उन्नति बोलैंड ने भी फाइनल का टिकट हासिल कर लिया।
1: एंड टू ऑफ आर स्प्रिंटर्स हैव मेड इट टू द फाइनल ऑफ द मेंस 1500 मीटर।

0: for the update as well. So off we go for, well, it's time for the Asian Games 2026 update.
1: Asian Games 2026, IG Nagoya.
2: ठीक शाम के 7:30 हुए हैं और आज की अंतिम अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं दर्पण टिकिया जी. हां, एशियन गेम्स की हम अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहे. आज की अगर 1500 मीटर महिलाओं की रेस की बात करें तो पारुल चौधरी पदक से सिर्फ एक स्थान चूक गई है. उन्होंने 4:09.46 का समय निकालते हुए, हालांकि उनका बेस्ट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन चौथा स्थान हासिल किया. वहीं भारत की ही पूजा ओला 4:16.78 के समय के साथ छठे स्थान पर रही.
3: एंड इन द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द एथलेटिक स्टेडियम, रिमेंबर वी टोल्ड यू इट वॉज ड्रेंच्ड, इट वॉज पोरिंग डाउन, इट वॉज स्लिपरी एंड दैट डिड अफेक्ट वन ऑफ आर एथलीट्स प्रवीण चित्रवेल हु वॉज इन द मेन्स ट्रिपल जंप इंजर्ड हिमसेल्फ in his first attempt and did not get himself on the scoreboard. However, Krishna Unnikrishnan got himself on the scoreboard. However, he ended up sixth. Meanwhile, in the men's 400 meter, Vishal TK finished at the fifth spot with a time of 45.48 seconds.
2: जी, अगर बात करें आज के दिन भर की हलचल की बात करें तो बड़ा उठक पठक देखने को मिली जापान में. जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, सुबह शानदार शुरुआत होती, शाम आते आते भी भारत की झोली में पदक आ गया. अगर बात करें कबड्डी की तो कबड्डी में दोनों पदक भारत की झोली में आए. भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता. बताएं तो 37-34 से भारतीय महिला टीम ने इस मुकाबले को जीता, फाइनल खिताबी मुकाबले को जीता. हालांकि बेहद टाइट मुकाबला था, सख्त मुकाबला था, लेकिन भारतीय महिलाओं ने खिताबी मुकाबला जीतकर चौथी बार एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीत लिया. वहीं पुरुष कबड्डी टीम की बात करें तो ईरान से ही मुकाबला था. यहां भी 40-34 से भारतीय टीम ने ईरान को शिकस्त देते हुए रिकॉर्ड 9वीं बार एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया.
3: Right, and then we also got a couple of silver medals early in the morning. One of them came from the shooting range, where the trio of Ashi Choksi, Vidarsha Vinod and Tilotama Sen brought us that silver medal in the women's team event of the 50-meter rifle three position.
2: जी, अगर बात करें सुबह की जब शुरुआत होती है, सूरज निकलता, उसी समय भारत को एक बड़ी जीत मिली. भारत के एक खिलाड़ी ने इतिहास रचा. बताना चाहूंगा सामन बरवाल के बारे में. 44 साल का इंतजार था मैराथन में पदक का, उन्होंने वो सपना वो ख्वाब पूरा किया. भारत के सामन बरवाल ने मेंस मैराथन में 2:11:37 का समय निकालकर सिल्वर मेडल जीता. यह एक नेशनल रिकॉर्ड भी उनका है, अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी उनका रहा है.
3: टॉकिंग अबाउट dreams coming true, Joshna Chinnappa, playing her 7th Asian Games, was able to get herself on the podium. She, along with Senthil Kumar in squash mixed doubles, registered a bronze medal, and two more medals have been confirmed in squash. Anahat Singh and Abhay Singh have made it to the final respectively in the women's singles and the men's singles. They will be playing their final matches tomorrow.
2: Sham dhalte dhalte darpan batana chahunga to भारत की प्राची चौधरी ने 400 मीटर दौड़ में 53.21 सेकंड का समय निकालकर भारत के जो पदक की संख्या थी उसमें इजाफा किया.
3: Right, and how can we forget Tajinder Pal Singh Toor, who won the silver medal in men's shot put and thereby completed a hat-trick of Asian Games medals. He won two gold medals back-to-back in 2018 and 2023 and now has won a silver medal today. However, the day is not done. There is one more match that the Indian fans are eagerly awaiting. It is the third round of the women's singles in badminton, where P.V. Sindhu is supposed to take on Japan's Miyazaki Tomaka, and that match is going to begin in a while from now. So we are still awaiting it. However, let's have a look at the medals tally. India are currently at number 10. Yes, those two kabaddi gold medals have helped us.

0: climbed a couple of spots on the medals tally. India have 4 gold medals in total, 12 silver and 14 bronze medals, with a total of 30 medals at number 10. People's Republic of China at the apex spot, number 1. Japan, number 2. And Republic of Korea, that's South Korea, at number 3.
1: ये बिल्कुल जी। अब जब कल शुरुआत होगी तो भारतीय एथलीट जब कल शुरुआत करेंगे, क्योंकि कल कई मुकाबले होने वाले हैं, शूटिंग में भारत को उम्मीद है, कई ऐसे खेल हैं जहां पर भारत की उम्मीद है, लेकिन अभी पीवी सिंधु का मुकाबला आना बाकी, देखना वहां पर क्या कुछ होता, बहुत कुछ आने वाला है। आज की अंतिम अपडेट के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और दर्पण टिकिया को ये कहते हुए अनुमति दीजिए कि आज रात 10 बजे सुनना न भूलिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम, जो विशेष रिपोर्ट है एशियन गेम्स पर, जरूर सुनिएगा। साथ साथ कल सुबह 10 बजे माफ कीजिएगा सुबह 9:30 पर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM रेनबो पर। इस वक्त स्टूडियोज की घड़ी में रात के 9:30 और 12 सेकंड्स हो रहे हैं। अब वक्त हुआ जाता है और प्रोग्राम नए रंग का समय इनकी खिदमत में सनालमाज बावजीर का पुरखलूस आदाब पेश है और प्रोग्राम नए रंग।

आगाज पर सुनिएगा हरफे ताबिंदा, इसके बाद आप सुन सकते हैं भुलाई नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्म गीत, और साथ ही आज हम बातचीत करेंगे आलमी यौम तौलीदी सेहत व एहतियात, और हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की।

और हिंदी फिल्मी गीतों के सफर में बातें होंगी अनेक। नैरन बज्म के इख्तिताम पर आप सुनेंगे पयामी शब, जिसको पेश करेंगे सैयद नदीम अख्तर जीदी।

0: तो आइए दोस्तों, बज्म का आगाज करते हैं हर्फे ताबिंदा से।
1: आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे माशरे की बुनियाद है बल्कि हमारी जिंदगियों को खूबसूरत बनाने का जरिया भी है, और वो है एक दूसरे की खैरख्वाही और पयामे इंसानियत। सामीन, इंसान एक समाजी मखलूक है, वो न तनहा खुश रह सकता है और न ही तनहा तरक्की की मंजिल तय कर सकता है। हमारी जिंदगी दूसरों के साथ जुड़ी हुई है और यही रिश्ता हमें इंसान बनाता है। जब एक मुआशरे में लोग एक दूसरे के लिए भलाई का जज्बा रखते हैं तो वहाँ नफरतें खुद ब खुद खत्म होने लगती हैं और मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं। जरा सोचिए, अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर डालें तो हमें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी न किसी मुश्किल में हैं। कोई माली परेशान का शिकार है, तो कोई जहनी दबाव में है, तो कोई सिर्फ एक अच्छे लफ्ज और तवज्जो का मोहताज है। ऐसे में अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएं, किसी का हाथ थाम लें, किसी की बात सुन लें, तो ये छोटा सा अमल भी बहुत बड़ी नेकी बन सकता है। सामीन, खैरख्वाही का मतलब सिर्फ जबानी हमदर्दी नहीं है, ये एक अमली जज्बा है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी परेशान हाल को तसल्ली देना, किसी गिरे हुए को सहारा देना, यही असल खैरख्वाही है। और याद रखें, सच्ची इंसानियत वही है जब हम दूसरों के लिए वही चाहें जो अपने लिए पसंद करते हैं। पयामे इंसानियत हमें ये दर्स देता है कि हम रंग, नस्ल, जबान और मजहब के फर्क से ऊपर उठकर सोचें, क्योंकि इंसान की असल पहचान उसकी इंसानियत है, ना कि उसकी जाहिरी पहचान। हमें चाहिए कि हम नफरत के जवाब में मोहब्बत दें, सख्ती के बदले नरमी इख्तियार करें और बुराई के मुकाबले में भलाई को अपना शियार बनाएं। कभी कभी एक मुस्कुराहट भी किसी के दिल का बोझ हल्का कर देती है। एक अच्छा लफ्ज किसी के दिन को रोशन बना देता है और एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। सामीन, आज का दौर तेजी से बदल रहा है, मादा परस्ती और खुदगर्जी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है कि हम खैरख्वाही और इंसानियत के पैगाम को आम करें। ये काम किसी बड़ी तहरीक का मोहताज नहीं, हम उसकी शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं, अपने मोहल्ले से, अपने दोस्तों से और अपने रोजमर्रा के रवैयों से। आइए आज हम सब ये अहद करें कि हम किसी के लिए आसानी का सबब बनेंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करेंगे और अपनी छोटी छोटी नेकियों से इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे। याद रखें, एक महज़ब और मजबूत माशरा वही होता है जहां लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, ना के बोझ। आखिर में बस इतना ही कि अगर हम सब मिलकर खैरख्वाही और इंसानियत को

हाँ जी बिल्कुल, कुछ गीत होते हैं ना जो मन को पवित्र कर देते हैं, ऐसा ही ये गीत हम सुन रहे थे। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं नित नए रंगों से सजा और द प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग, जिसमें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और इस गीतों के सफर में बातें होंगी अनेक। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सुरीले गीतों का सफर शुरू करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, और अंतराल के उस पार बातें होंगी। आलमी यौम तौलीदी सेहत वो एहतियात क्यों मनाया जाता है, इस पर हम जो है ना मजीद चर्चा करेंगे।

हाँ जी, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं मन चलिए नटखट गीत और ढेरों सारी बातें लेकर। जब बात हो ही रही है मन चले और नटखट गीतों की, तो क्यों ना हम ये गीत सुनते चले।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं अर्थ प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज हम बातचीत करेंगे आलमी यौम तौलीदी सेहत व एहतियात के मुतालिक, जो कि हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका मकसद नौजवानों और जोड़ों में माना हमल के तरीकों के बारे में शऊर बेदार करना है। आलमी यौम तदरा के हमल की अहमियत के हवाले से अगर हम बातचीत करें तो आलमी यौम तौलीदी सेहत और एहतियात, जैसा कि हमने आपसे कहा कि हर साल 26 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और इस दिन का बुनियादी मकसद तौलीदी सेहत के बारे में आगाही फराहम करना है। तौलीदी सेहत और ख़ानदान की मनसूबा बंदी, इस हवाले से हम बात करते हैं कि माना हमल के तरीकों का इस्तेमाल ना सिर्फ नापसंदीदा हमल से बचाव में मदद करता है, बल्कि माँ और बच्चे की सेहत के मुतालिक WHO भी बेहतर बनाता है। आलमी इदारा सेहत बर्थ बच्चों की पैदाइश के दरमियान मुनासिब वक्फा माँ की सेहत की बहाली और बच्चे की बेहतर परवरिश के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आगे भी हम इस पर मज़ीद चर्चा करेंगे, लेकिन भाई जब बातचीत हो ही रही है इन सारी चीज़ों की, तो हम आपके मनोरंजन का ख्याल कैसे ना रखें। तो आइए सुनते हैं इसी हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत।

ही खेल की पहचान बन जाते हैं। आईची नागोया के एशियन गेम्स में आज भारत के लिए ऐसा ही एक दिन रहा। कहीं मैट पर दांव पेस थे, कहीं शूटिंग रेंज पर सांसों को थाम देने वाला सन्नाटा, कहीं दौड़ती हुई सड़क पर एक एथलीट 42 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रहा था, तो कहीं स्क्वॉश कोर्ट पर हर पॉइंट इतिहास के और करीब ले जा रहा था। और इन तमाम तस्वीरों के बीच भारत ने आज सिर्फ पदक नहीं जीते बल्कि अपनी खेल विरासत की कई कहानियों को एक साथ आगे बढ़ाया। तो आईची नागोया में आज भारत ने कितने मौके बनाए, कितने मकाम हासिल किए, किसने तिरंगा पोडियम तक पहुंचाया और किन मुकाबलों ने बढ़ाई कल की उम्मीद, इन सब की पूरी तस्वीर अब आप

के सामने है। एशियन गेम्स 2026 में आज क्या कुछ हुआ, पूरे रोमांच को समेटे डेली हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन की हेडलाइंस पर।

0: सुरक्षा विनोद ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। स्कोश कोर्ट पर कामयाबी भरा दिन। जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, जबकि अनाहत सिंह और अभय सिंह ने सिंगल्स फाइनल में जगह बनाकर दो और पदक किए पक्के। शुरुआत करते हैं कबड्डी से। आज मैट पर हर रेड में रोमांच था, हर टैकल में ताकत और अंत में तिरंगा रहा सबसे ऊपर। कबड्डी के डबल गोल्ड की पूरी कहानी बता रही हैं मेघा अपनी रिपोर्ट में।
1: इंडिया कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन कबड्डी विद बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टीम्स ओवरकमिंग ईरान इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल्स। द वुमेन वर फर्स्ट टू स्ट्राइक इन अ टेंस गोल्ड मेडल कॉन्टेस्ट। इंडिया हेल्ड देयर नर्व टू डिफीट ईरान 37-34 एंड सक्सेसफुली डिफेंड द टाइटल दे वन एट हांगझोउ। इट इज इंडियाज फोर्थ Women's Kabaddi Gold since the event entered the Asian Games program in 2010. A few hours later, the men made it 2 out of 2. India defeated Iran 40-34 to retain their crown and underline their extraordinary dominance of the sport at the Asian Games. Men's Kabaddi has featured at the Asian Games since 1990 and India have now won 9 gold medals in 10 editions.
0: निशाने लगाने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी होता है उस एक पल में खुद को बिल्कुल स्थिर रखना। शूटिंग रेंज में आज भारत ने कैसे साधा पोडियम का सफर, बता रहे हैं दर्पण टिकिया।
2: शनिवार को एक बार फिर शूटिंग रेंज में भारत की चांदी हुई। महिलाओं की 50 मीटर थ्री पोजीशन राइफल टीम स्पर्धा में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिगड़ी ने रजत पदक हासिल किया। तीनों ने कुल मिलाकर 1763 पॉइंट हासिल किए और दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही 20वें एशियन गेम्स में भारत शूटिंग के खेल से 11 पदक हासिल कर चुका है। 2023 में बनाए अपने खुद के एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए चाइनीज तिगड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इन परिणामों के आधार पर विदर्शा और तिलोत्तमा को इंडिविजुअल प्रतियोगिता के फाइनल में भी जगह मिली। हालांकि स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ खराब शॉट्स के बाद पिछली बार इसी प्रतिस्पर्धा में एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल लेने वाली आशी चौकसी क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई। फाइनल में जहां चीन की जियाउ हान ने एक नया एशियन रिकॉर्ड स्थापित किया, तो भारत की तिलोत्तमा चौथे और विदर्शा विनोद पांचवें स्थान पर रही और दोनों ही एकल वर्ग में पदक से चूक गई।
0: ट्रैक पर रफ्तार, फील्ड में फासले और भारतीय खिलाड़ियों के नाम होते गए पदक। एथलेटिक्स में भारत के शानदार दिन का पूरा हाल बता रही हैं मेघा।
1: इट वॉज अ 3 मेडल डे फॉर इंडिया इन एथलेटिक्स विद 2 सिल्वर्स एंड अ ब्रॉन्ज एंड लीडिंग द चार्ज वाज सावन बरवाल हु प्रोड्यूस्ड अ सुपर्ब रन इन द मेंस मैराथन क्लॉकिंग 2 hours 11 minutes and 37 seconds। बरवाल वन सिल्वर एंड बेटर्ड हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड बाय 21 seconds। लेटर इन द डे तेजिंदर पाल सिंह तूर एडेड अनदर एशियन गेम medal to his collection. The two-time defending champion registered a best throw of 20.64 meters to take silver in the men's shot put. There was a bronze on the track as well. Prachi Chaudhary finished third in the women's 400 meters, clocking 53.21 seconds, while Kiran Pehel missed out on the podium. National record holder Vishal TK finished fifth in the men's 400 meters final. Vishal had impressed in qualification, clocking 45.27 seconds to win his heat, the fastest time across all three heats. In the men's triple jump, Karthik Unnikrishnan finished 6th, while Praveen Chitravel's challenge ended early after he suffered an injury on his opening attempt. In the women's 1500 meters, Paral Chaudhary came agonizingly close to a medal, finishing 4th in a personal best 4 minutes 9.46 seconds. Pooja finished 6th. India also set up several possibilities for the days ahead. Animesh Kajur qualified for the men's 200 meters final after finishing 2nd in a semi-final in 20.81 seconds. While Harita Bhadra and Unnati Ayappa progressed to the women's 200 meters final. And in the decathlon, Tejaswin Shankar ended day one on the top of the standings with 4,338 points after 5 events, keeping himself firmly in contention as the remaining 5 disciplines take place on Sunday.
0: बॉक्सिंग रिंग में हर राउंड के साथ रणनीति बदलती रहती है, लेकिन लक्ष्य वही रहता है, यानी अगले दौर में जगह। भारतीय मुक्केबाजों के लिए कैसा रहा आज का दिन, सुनते हैं शाहिद आजमी की ये रिपोर्ट।
3: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए दोहरी खुशी की खबर है। प्रिया घंघास और कपिल पोखरिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया घंघास का सामना दक्षिण कोरिया की ओह योन जी से हुआ था। प्रिया ने यह मुकाबला 5-0 से जीतकर अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। वहीं पुरुषों के 90 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। राउंड ऑफ 16 में कपिल के सामने ईरान के सैम एस्टाकी थे। कपिल ने पूरे मुकाबले में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और जजों ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से उन्हें विजेता घोषित किया।

0: के साथ कपिल ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि 55 किलोग्राम वर्ग में जादू मनीष सिंह को निराशा हाथ लगी। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला फिलीपींस के कार्लो आलम से हुआ। कड़े मुकाबले में जादू मनी को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा और उनका एशियन गेम्स में अभियान समाप्त हो गया।
1: पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक ने 15वें मिनट में फील्ड गोल किया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। ये पूल ए में भारत की लगातार चौथी जीत थी और टीम ने 12 अंक के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एक तीर एक निशाना और पदक की ओर बढ़ता भारत। दर्पण टिकिया की रिपोर्ट में जानते हैं कि आर्चरी रेंज में आज कैसा रहा भारतीय तीरंदाजों का दिन।
2: शनिवार को एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी का भी आगाज हुआ। पुरुषों की रिकर्व प्रतिस्पर्धा के क्वालिफाइंग राउंड में ही उन्होंने कुल संभव 720 में से 698 अंक हासिल करते हुए एक नया गेम्स रिकॉर्ड सेट किया। रैंकिंग राउंड में धीरज पहले पायदान तो उनके साथ ही नीरज चौहान 20वें और यश भोगे 25वें पायदान पर रहे। बतौर टीम भारत दूसरे स्थान पर रहा। महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत की टीम रैंकिंग छठी रही, तो वहीं बतौर इंडिविजुअल्स कुमकुम मोहद को 10वां, कीर्ति को 20वां तो अंकिता भकट को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। महिलाओं की टीम प्रतिस्पर्धा में पहले स्थान के लिए भारत और चीन में टाई रहा, हालांकि टाई ब्रेकर में चीन ने बाजी मारी। इंडिविजुअल स्टैंडिंग्स में चिकिता तानीपारथी पहले, पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति वेनम 13वें और प्रतिका प्रदीप 20वें स्थान पर रही। तो वहीं मेंस टीम तीसरे और इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में साहिल जाधव 5वें, मणिरत्नम गणेश 14वें और कुशाल दलाल 16वें स्थान पर रहे। आपको याद दिला दें कि क्वालिफिकेशन या रैंकिंग राउंड से केवल ड्रॉ का फैसला होता है और असली प्रतियोगिता का अभी शुरू होना बाकी है। इसके साथ ही रिकर्व मिक्स टीम प्रतियोगिता में धीरज और कुमकुम, तो वहीं कंपाउंड मिक्स टीम प्रतिस्पर्धा में साहिल और चिकिता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
1: एशियन गेम्स में भारतीय घुड़सवारों की आज की चुनौती पर शाहिद आजमी की रिपोर्ट।
0: घुड़सवारी से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स के पदक विजेता हृदय छेदा और जय सूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत रेसेस के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने 2 क्वालिफाइंग राउंड के बाद टॉप 15 में स्थान हासिल कर लिया है। हृदय छेदा 135.059 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है, जबकि जय सूद ने 133.559 अंक हासिल कर 13वां स्थान हासिल किया। वहीं श्रुति बोरा 129.941 अंकों के साथ 24वें स्थान पर रही। व्यक्तिगत रेसेस का फाइनल कल खेला जाएगा, जहां हृदय और जय की नजर पदक पर होगी।
1: रुख करते हैं अब बैडमिंटन कोर्ट का। आज बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला दिन रहा। मेघा बता रही हैं अपनी रिपोर्ट में कि कौन बढ़ा आगे और किसका सफर हुआ समाप्त।
3: अ डे ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्चून्स फॉर इंडिया इन द इंडिविजुअल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन एट द एशियन गेम्स। लक्ष्य सेन सिंगल्स कैंपेन केम टू एन अर्ली एंड अगेंस्ट फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन लोकिन यू। द इंडियन फॉट बैक आफ्टर लूजिंग द ओपनिंग गेम, बट द सिंगापोरियन प्रिवेल 21-12, 15-21, 21-14 इन अ कॉन्टेस्ट दैट लास्टेड ओवर now. It meant an individual Asian Games medal continues to elude Lakshay, although he has already won a bronze from the men's team event at these games. Ayush Shetty began with a commanding 21-7, 21-7 victory over Kazakhstan Maksud before being stretched by the experienced Chao Tin Chen. Ayush pushed the third seed to 3 games but went down 16-21, 21-19, 17-21 in the pre-quarterfinals. The standout performance though came from 19-year-old Unnati Huda after surviving a 3-game battle against Malaysia's Wong Ling Ching. Unnati stunned world number 6 Putri Kusuma Vardhani 21-19, 21-13 to book her place in the quarterfinals, where she faces Japan's Akane Yamaguchi. PV Sindhu also began her individual campaign with a straight games win over Chinese Taipei's Chiu Pin Chian before overcoming Japan's Tomoka Miyazaki 21-9, 21-13 in the round of 16 to book her place in the women's singles quarterfinals.
1: कैनो में भारत की चुनौती का क्या रहा नतीजा, दर्पण टिकिया की ये रिपोर्ट।
2: शनिवार को भारत के लिए कनू स्प्रिंट की अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में हर्षवर्धन सिंह शेखावत, पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार सत्यप्रकाश की जोड़ी, तो वहीं राजू रावत और नेहा देवी लचनबाम की जोड़ी शिरकत कर रही थी। इनमें से कोई भी भारत के लिए पदक नहीं दिला सका।
1: स्क्वॉश में आज भारत के लिए कहानी सिर्फ एक पदक की नहीं रही। एक तरफ अनुभव ने पोडियम छुआ तो दूसरी

0: तरफ नई पीढ़ी ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास के दरवाजे पर दस्तक दी। स्क्वॉश कोर्ट का पूरा रोमांच मेघा के साथ।
1: इंडियन स्क्वॉश एंजॉयड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट डेज एट दीज एशियन गेम्स विद टू सिंगल्स फाइनलिस्ट एंड अ मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज। द परफॉर्मेंस ऑफ द डे केम फ्रॉम 18 ईयर ओल्ड अनाहत सिंह अप अगेंस्ट होम फेवरेट एंड वर्ल्ड नंबर 6 सतामी वतानबे। अनाहत फाउंड हरसेल्फ टू गेम्स डाउन एंड देन टू मैच पॉइंट्स डाउन इन द थर्ड, बट द इंडियन प्रोड्यूस्ड अ रिमार्केबल टर्न अराउंड, सेविंग बोथ मैच पॉइंट्स एंड विनिंग 4 consecutive points to take the third game. From there, the momentum completely shifted. Anahat registered a stunning comeback, winning 9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3 to reach the women's singles final. It was also the biggest win of a young career by ranking. Abhay Singh then ensured India would have representation in both singles finals. He beat Pakistan's Mohammad Irfan in straight games 11-3, 12-10, 11-6 to move within one victory of gold. Earlier, Joshna Chinnappa and B. Senthil Kumar had claimed bronze in the mixed doubles after an agonizing semi-final defeat to Hong Kong. The Indians had match points in the deciding game but eventually went down 10-11, 11-2, 10-11. For the veteran Joshna, it is a 6th Asian Games medal. And there is history on offer on Sunday. India has never won an Asian Games singles gold in squash. Both Anahat and Abhay now have the opportunity to change that with Olympic qualification also at stake.
0: टेबल टेनिस में आज भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पॉइंट दर पॉइंट चली इस जंग में भारत का सफर कहां तक पहुंचा? बता रहे हैं शाहिद आजमी।
2: एशियन गेम्स में आज खेले गए महिला और पुरुष एकल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भारत की यशस्विनी घोरपड़े का सामना जापान की मीवा हरिमोटो से हुआ। यशस्विनी ने मुकाबले में अच्छा संघर्ष किया, लेकिन जापानी खिलाड़ी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दे दी। इस हार के साथ यशस्विनी घोरपड़े का महिला एकल में अभियान समाप्त हो गया है। मीवा हरिमोटो ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष एकल के राउंड ऑफ 32 में भारत के शाह के सामने चीन के लिन शिनडोंग की चुनौती थी। लिन शिनडोंग ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और मानुष शाह को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। इस हार के साथ मानुष शाह भी पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए। इस तरह आज खेले गए टेबल टेनिस के दोनों मुकाबलों में भारत को निराशा हाथ लगी। हालांकि टेबल टेनिस में भारत के लिए इस एशियन गेम्स में पदक का खाता खुल चुका है। कल मिश्रित युगल में दिया चितले और मानुष शाह की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर भारत को टेबल टेनिस में इस बार का पहला और एकमात्र पदक दिलाया था।
0: फेंसिंग में मुकाबले पलक झपकते बदलते हैं, एक टच जीत और हार का फैसला कर सकता है। भारतीय फेंसर्स ने आज किस तरह पेश की अपनी चुनौती, मेघा बता रही हैं एरिना का हाल।
1: India's campaign in the team fencing events came to an end at the quarterfinal stage. The men's saber team of Karan Singh, Gisho Nidhi, Lakshya Batser and Vishal Thapar began strongly, beating Philippines 45-27 in the round of 16. That set up a much tougher quarterfinal against Asian powerhouse South Korea. India could not repeat their opening round performance and went down 25-45, ending their medal challenge. There was a similar story in the women's foil. Joyce Ashishta, Stalin Raj, Sonia Devi Vaikom, Kanu Priya Chawla and Meena Devi Narim registered a convincing 45-24 victory over Indonesia to reach the last eight, but host Japan proved too strong in the quarterfinal, bringing India's campaign to an end.
0: एशियन गेम्स के सातवें दिन यानी आज 22 गोल्ड मेडल दांव पर थे। आइए मेघा से जानते हैं मेडल्स टैली का लेटेस्ट अपडेट।
1: With 2 gold medals in Kabaddi, India have moved up to the 10th in the medals tally, ending the day with 30 medals, 4 gold, 12 silver and 14 bronze. China continue to lead the standings, followed by host Japan in 2nd and South Korea in 3rd.
0: कल का दिन आईची नागोया में भारत के लिए सिर्फ एक और दिन नहीं होगा, क्योंकि सुबह की पहली लहर से लेकर शाम के आखिरी ट्रैक तक भारत की उम्मीदें एक के बाद एक कई मैदानों पर उतरेंगी। सुबह करीब 4 बजे समंदर की लहरों के बीच कमाली मूर्ति और उसके कुछ देर बाद शुगर शांति बनार से सर्फिंग के विमेन्स शॉर्टबोर्ड में अपनी चुनौती पेश करेंगी। यानी भारत का दिन मैदान से नहीं लहरों से शुरू होगा। इसके साथ ही एथलेटिक्स में प्रियंका गोस्वामी और मंजू रानी महिला मैराथन रेस वॉक के फाइनल में उतरेंगी। रहेगी। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और तनी पर्थी चिकिता की कंपाउंड टीम मंगोलिया के खिलाफ उतरेगी, जबकि पुरुष टीम का सामना यूएई से होगा। और अगर ये टीमें आगे बढ़ती हैं तो कुछ ही देर के बाद क्वार्टर फाइनल का रास्ता भी खुल सकता है। बैडमिंटन कोर्ट पर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी का, जबकि मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा

0: राष्ट्रों की जोड़ी चीन की चुनौती का सामना करेगी। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुडा के सामने जापान की अकाने यामागुची होंगी। शूटिंग रेंज में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक पर निशाना साधने उतरेंगी। वहीं ट्रैप में कायनन चनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष वर्ग में, जबकि नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत महिला वर्ग में निशाना लगाएंगी। दोपहर तक एथलेटिक्स ट्रैक भी पूरी तरह भारतीय रंग में नजर आएगा। डिकैथलन में तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद एक्शन में होंगे। 400 मीटर हर्डल्स में संतोष कुमार तमिला रासन, यहास पलाक्षा, विद्या रामराज और अनु राघवन चुनौती पेश करेंगे। लॉन्ग जंप में नजरे रहेंगे मुरली श्रीशंकर और डेविड सोलोमोन पट्टूराज पर। और फिर आएगा दिन का एक बड़ा पदक सत्र। वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगी। कुराश में संगीता, भारती, यश कुमार चौहान और विशाल पदक की दौड़ में होंगे। दोपहर बाद स्क्वॉश कोर्ट पर निगाहें टिकेंगी। महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अभय सिंह शानदार प्रदर्शन कर इतिहास बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बॉक्सिंग रिंग में भी एक्शन होने वाला है। अंकुश 80 किलोग्राम, परवीन 65 किलोग्राम, सचिन 60 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में विनिंग पंच जड़ने की कोशिश करेंगे। और फिर शाम ढलते ढलते नागोया का एथलेटिक्स स्टेडियम एक बार फिर भारतीय उम्मीदों का केंद्र होगा। एनसी सोजन और शैली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में उतरेंगी। सर्वेश कुशारे और आदर्श राम हाई जंप के फाइनल में होंगे। नंदनी कोंगान 100 मीटर हर्डल्स के फाइनल में होंगी। अनिमेश कुजूर 200 मीटर में पदक जीतने का जोर लगाएंगे और 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी और अंकिता पदक के लिए दौड़ेंगी। और इसी बीच हॉकी के मैदान पर भारतीय महिला टीम के सामने होगी सिंगापुर की चुनौती। वॉलीबॉल में पुरुष टीम वियतनाम से भिड़ेगी। फेंसिंग में भवानी देवी और भारतीय महिला सेबर टीम की चुनौती जारी रहेगी। और दिन का अंत होगा एथलेटिक्स में महिला 4x100 मीटर रिले के साथ। एक दिन, इतने सारे मैदान और ढेर सारी उम्मीदें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम के एडिटर थे विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आईची नागोया से भारत की उम्मीदों और उपलब्धियों का ये सफर यहीं जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे खेल के नए रोमांच और तिरंगे की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।

101.9। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स का डेली हाइलाइट्स और अर्ध प्रोग्राम नए रंग जारी है जिसमें हम बात कर रहे थे आलमी यौमे तौलीदी सेहत जो कि हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें एक और एक अहम पड़ाव यह आता है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना। जी हाँ बिल्कुल, तादाद औलाद में इतदाल और माना हमल तदाबीर के इस्तेमाल से खवातीन को अपनी तालीम कैरियर और ज़ाती ज़िंदगी के बेहतर फैसले करने का मौका मिलता है। इससे माशरे में ख़वातीन का मुकाम बुलंद होता है और वो ख़ानदान की माशी तरक्की में भी भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं। और तीसरे मरहले पे ये आता है कि आगाही और तालीम की ज़रूरत। जी हाँ, आज भी बहुत से माशरे में माना हमल के तरीक़ों के इस्तेमाल से मुतालिक झिझक और गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। इस दिन के तौसित से सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और डिजिटल मीडिया के ज़रिए दुरुस्त तबई मालूमात आम की जाती है ताकि लोग महफूज और सेहतमंद ज़िंदगी का इंतखाब कर सकें। जी हाँ दोस्तों, आलमी यौमे तौलीदी सेहत हमें ये याद दिलाता है कि

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं अर्थ प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। हाँ जी बिल्कुल, अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की। हाँ जी, एंटीमी हथियारों के मुकम्मल खात्मे का आलमी दिन हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया को एंटीमी तबाही से बचाना और अमन का फरोग देना है। एंटीमी हथियार इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और हौलनाक तबाही की अलामत है। 26 सितंबर का दिन अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद के तहत दुनिया भर में इस अज़्म के साथ मनाया जाता है कि कुर्रे अर्ज़ को इन खतरनाक हथियारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाए।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं अर्थ प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चैनल।

हिंदी फिल्म गीत और साथ ही हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की। जी हाँ दोस्तों, एंटिमी हथियारों के खतरात हम आपको बताते चले कि फौरन तबाही, ये एक एंटिमी धमाका मिनटों में लाखों इंसानों को मौत के घाट उतार सकता है और शहरों को राख का ढेर बना सकता है। जी हाँ बिल्कुल। और माहौलियाती तबाही, अगर हम इस हवाले से बात करें तो एंटिमी जंग के नतीजे में पैदा होने वाले और जौहरी सर्द मोहरी यानी कि रेडिएशंस वाला तापकारी गुबार जमीन पर जिंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है।

जी हाँ भाई, बिल्कुल समझ है, लेकिन घड़ी हमें टिकटिकी बांधे इशारा कर रही है कि भाई वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

जी हाँ, अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, माशी बर्बादी एक इसका अहम हिस्सा रहा है कि एंटीमी हथियारों की तबाही, देखभाल और तजुर्बात पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, जो कि दुनिया से गुर्बत, बीमारी और जहालत के खात्मे पर खर्च किए जा सकते हैं। और आलमी कोशिशें और किरदार, यानी कि ग्लोबल एफर्ट्स। जी हाँ, अक्वामे मुत्तहिदा मुख्तलिफ बैन अल-अक्वामी तंजीमी और अमन पसंद ममालिक मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तमाम ममालिक अपने एंटीमी ज़खायर को महदूद करें और बिलआख़िर इन्हें मुकम्मल NPT माहदे के तौर पर ख़त्म कर दें। और एंटीमी हथियारों की ममानत का माहदा सिलसिले की कड़ियां हैं, ताहम दुनिया को अभी भी अमली इकदामात की ज़रूरत है।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और तो प्रोग्राम नए रंग आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास पावजी के संग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं बुलाई नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के मुतालिक। बज्म के आखिरी पड़ाव पर हमारा अज्म यही होना चाहिए कि एंटीमी हथियारों का खात्मा सिर्फ सियासतदानों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों की अखलाकी जिम्मेदारी है, और आने वाली नस्लों को एक पुरअमन, महफूज और एंटीमी हथियारों से पाक दुनिया हम सब का अव्वलीन फरीजा है। जी हाँ दोस्तों, 26 सितंबर का दिन हमें यही याद दिलाता है कि जंग नहीं, अमन ही इंसानियत की बका का वाहिद रास्ता है।

तो दोस्तों, सुरीले गीतों का सफर होता है यहीं पर अब खत्म। आइए अब सुनते हैं पयाम शब। तहरीर वो पेशकश होगी सैयद नदीम अख्तर जेदी की।

फसाने अपनी मोहब्बत के सच है, पर कुछ कुछ बढ़ा भी देते हैं हम ज़ेबे दास्तां के लिए। जिंदगी के वाकयात और अपने तजुर्बात बयान करते वक्त हकीकत को खूबसूरत बनाने के लिए झूठ या गैर जरूरी मुबालिगे का सहारा नहीं लेना चाहिए। वक्ती तौर पर बात ज्यादा दिलचस्प बन सकती है, मगर सच्चाई और एतमाद मुतासिर हो सकता है। असल खूबसूरती इसमें है कि हकीकत को हकीकत ही रहने दिया जाए। दास्तान को खूबसूरत बनाने के लिए अल्फाज सजाए जा सकते हैं, मगर हकीकत में इजाफा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच की सादगी ही उसकी असल खूबसूरती है।

तो दोस्तों, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम नए रंग इख्तिताम को पहुंचता है। इस वादे के साथ दोबारा जल्द होगी आपसे मुलाकात इन्हीं मीटर्स पर। तब तक के लिए आपकी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर को दीजिए इजाजत।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित भारत के पदकों की संख्या 30 हुई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केन्द्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the Commission.
3: A meeting of the Election Commission of India was held today. The Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar, and Election Commissioners, Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi, were present in today's Commission meeting. The Commission unanimously took a number of decisions in today's meeting, which are being shared through today's ECI press note.
2: The Election Commission today said that booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision SIR to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by Electoral Registration Officer. Chief Justice of India, Justice Suryakant, today inaugurated the country's first Victim Rights Centre in Patna. The first of its kind Victim Rights Centre in the country is established on the premises of the Bihar State Legal Services Authority. Union Minister for Home Affairs and Cooperation Amit Shah inaugurated several development initiatives under the auspices of the National Cooperative Consumers Federation of India, NCCF, at Kundra near Kollam in Keralam today. These initiatives aim to ensure women's participation in the cooperative sector and strengthen women empowerment.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking calls from you on matters related with markets, business or economy. But do remember that we do not address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीटी कोड 011 भी डायल करें चर्चा को और समृद्ध बनाने के लिए हमारे साथ भाग ले रहे हैं बाजार और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा और पुनीत जैन शिशिर जी पुनीत जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
0: A warm welcome to both of you.
2: Thank you.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां
0: यूनाइटेड स्टेट्स रिजेक्ट्स ईरान 7-डे प्रपोजल टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इंडियन स्टॉक मार्केट रिमेन्स अंडर कंट्रोल ऑफ बेयर्स फॉर 7th कंसेक्यूटिव वीक And Wall Street wraps up week with notable gains.
1: अमेरिका ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य को खोले जाने वाले ईरान के 7 दिवसीय प्रस्ताव को खारिज किया भारतीय शेयर बाजार पर लगातार

0: concern at this moment is that the price rise, because many of the companies have indicated that they are going to increase the price, so that may dampen the sentiment. So I may be sounding very pessimist at this moment, but the reality is that the good news are very scarce to find.
1: So Puneet, inflationary trends coming up, as Shishir said, is worrisome.
2: Absolutely, Rajesh. And inflation is technically, it really kills demand. Mm. And that's what we've seen, in fact. If you, while you look at the numbers, the GDP numbers might be slightly higher. But it definitely dampens the mood for consumption. Going forward, like you mentioned, there's going to be festive season. We expect the demand to be better. But I think it will be below what most market expectations were. In fact, one of the first indications was the gold sales in this in the last few days, and we've seen a decline in gold sales because of higher prices. So clearly price is a mood buster as far as demand is concerned.
3: Is beech hamare sath Mumbai se Ratnakar jud gaye hain. Ratnakar ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kripya apna sawal poochiye.
4: Hello
3: ji, apna sawal poochiye.
4: Ha, good evening madam. Mera sawal hai ki abhi jo market mein AI related बहुत कॉम्पिटिशन नहीं तो वो पार्टिसिपेट करने के लिए अपील होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने में आदमी का कितना नुकसान नहीं तो फायदा हो सकता है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? और दूसरा सवाल एक है कि अभी जो एकादा स्क्रीप शेयर स्क्रीप आईपीओ की इश्यू होने के बाद जब भी पहले लिस्टिंग होता है, अच्छा कंपनी का समझो लिस्टिंग हो गया, तो वो ग्लोबली रिनाउन होने के लिए कितना समय लगेगा, और तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, वो ग्लोबली ऑथेंटिकेट कैसे हो जाएगा?
0: देखिए, जो पहला प्रश्न आपका है कि एआई रिलेटेड कंपनीज का, अगर आप बीते सप्ताह का देखें या उसके पहले सप्ताह में देखें, हमने दो तरीके का ट्रेंड देखा. एक बार हमने देखा कि जब जो एआई बेस्ड कंपनीज थी या जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी उसमें बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि एआई को लेकर के जो दुनिया की कंपनियां हैं उन्होंने कहा था कि उसकी रफ्तार को कम करना है, और उसके पहले ये कहा गया था कि जो एआई कंपनीज हैं उनको अपनी सुविधाएं विकसित करने के लिए आईटी कंपनियों की मदद की जरूरत है. तो इस समय मुझे लगता है कि एआई कंपनी को लेकर के उत्साह रखना चाहिए, लेकिन अति उत्साह नहीं होना चाहिए. आप अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा, जैसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपये शेयर में लगाने के लिए है, तो आप 10 रुपये या 15 रुपये अगर आप एआई में लगाते हैं, और एक कहते हैं ना कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर के चलें, तो वो बेहतर होगा. तो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब है. दूसरा आपका प्रश्न जो था वो शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप उस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पाए, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईपीओ के बाद जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसको ग्लोबली रिकॉग्निशन होने में कितना समय लगता है. देखिए, ये कोई समय तय नहीं है. एक कंपनी अगर अच्छी है तो उसको वैश्विक स्तर पर या घरेलू स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए आईपीओ की जरूरत नहीं होती, उसे अपने प्रोडक्ट की जरूरत होती है, उसे अपने सामान की जरूरत होती है, अपनी सेवाओं की जरूरत होती है. आईपीओ एक तरीके से निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश है, निवेशकों को एक उम्मीद जगह, मतलब निवेशकों के बीच एक उम्मीद ये देता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी. तो दो अलग अलग पहलू हैं, और कंपनियां, कई कंपनियां हैं अगर आप देखें आईटी क्षेत्र में जो कि वैश्विक स्तर पर भी काफी अच्छा नाम कर रही हैं, और वो आईपीओ में भी उनको आए हुए काफी समय हो गया, उनके शेयर प्राइसेस भी ठीक ठाक चल रहे हैं. तो मुझे लगता है कि उसके लिए कोई समय सीमा तय करें कि कितने समय में उनको वैश्विक ख्याति मिलेगी, शायद वो उचित नहीं होगा.
3: बेंगलुरु से हमारे साथ एनआर प्रसाद जुड़ रहे हैं. प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
5: हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर. हेलो राजेश जी, हेलो प्रिया जी. मिस्टर सिन्हा, टू क्वेश्चन.
0: Yeah, please.
5: Sir, this is regarding first is, I think GST Council meet is on 7th October. They're going to discuss this UPI MDR issue plus other processes. Now, from 15th onwards, if it's going to be on MDR, whatever the issue comes out, would it hit the banking sector? This is my first question. Second question is, this PLI, second installment of around 19,000 crore being released or under the process of getting released, which sector can revive because of this in the manufacturing sector? Thank you. These are my two questions.
0: Okay. So what I will do, I will answer the first question, and the second question I will request.

0: बैठा है।
1: देखिए जैसे शिशुल ने शुरुआती दौर में ही प्रोग्राम में बताया था कि चार फैक्टर्स हैं इस वक्त जो बाजार को दबाव में ला रहे हैं। जियो पोलिटिकल टेंशन हैं, जो वॉर का माहौल है, जो ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उससे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है भारत के बाजारों पर। यूएस बॉन्ड यील्ड्स 5% से ऊपर चली गई हैं, उससे भी हमारे जो इन्फ्लोज हैं, जो लिक्विडिटी है, वो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और चौथा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, लगातार सेलिंग चल रही है। इस महीने भी करीब करीब 20,000 करोड़ का नेट सेलिंग एफआईआईज ने किया है। और कुछ हद तक मैं कहूंगा कि घरेलू बाजारों को देखें तो एक तो महंगाई, थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, और जो एक ताता लगा था आईपीओस का, उसने भी काफी लिक्विडिटी बाजार से करी है। जब तक ये फैक्टर्स नहीं बदलेंगे, खासतौर से जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उसी से क्रूड कच्चे तेल की कीमतों पर, उसी से इन्फ्लेशन पर, यूएस बॉन्ड यील्ड, ये सभी उससे अफेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि ये जब माहौल बदलेगा तभी कोई बड़ी हम यहां से बदलाव देख सकते हैं। बाजार एक ट्रेडिंग रेंज में लगातार 7 सप्ताह से बाजार गिरा है। मेरा ऐसा अनुमान है कि थोड़ा यहां से पुलबैक हम देखेंगे और बाजार में शायद अगले सप्ताह हम थोड़ा पुलबैक देख सकते हैं, बिकॉज वैल्यू बाइंग होगी डेफिनेटली। पर मुझे कोई सस्टेन्ड बाइंग या सस्टेन्ड अपट्रेंड तब तक नहीं होगा जब तक ये फैक्टर्स में बदलाव नहीं आएगा।
2: फरीदाबाद से हमारे साथ सुभाष जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार सर। सर, मैं ये जानना चाहता था कि लगातार 2 साल से ये निफ्टी और सेंसेक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर कहाँ जाएंगे सर? ये तो बिल्कुल भी, हमें तो बैंक जो एफडी जो रिटर्न मिलता है वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा, नेगेटिव में जा रहे हैं।
1: सुभाष जी नमस्कार। आप सही कह रहे हैं कि यदि हम पिछले 2 वर्षों का हम आंकड़े देखें तो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को पिछले 2 वर्षों में बहुत बड़ी बढ़त नहीं मिली है। हालांकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर है वहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट आए हैं, लेकिन जो लार्ज कैप्स हैं और इंडेक्स को अगर हम देखें तो वहां बहुत प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ और वर्षों जाएं, यानी हम अगर आप 5 वर्ष से स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टेड थे, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो बेनिफिट्स हैं इन्वेस्टर्स को वो काफी रहे हैं। 9 से 10% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिली है। तो इसका जो मैं कहूंगा कि मैसेज है वो ये है कि आप शॉर्ट टर्म में मत घबराइए, ऐसा रहता है। हमने बहुत बार देखा है पिछले कई वर्षों में, 2-3 दशकों में हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स में कभी कभी रिटर्न नहीं आती है। लेकिन यदि आप यहां बने रहेंगे, अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे 4-5 वर्षों से, वर्ष में या उससे ज्यादा, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिटर्न आएगी। और हमारे पिछले कई वर्षों के, अगर 40-50 साल के हम डेटा देखते हैं, तो ये बात तय है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अबव 5 ईयर्स, उसमें आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगी। आप इससे परेशान न हो, आप मेरे ख्याल से आप इसमें बने रहे तो बेहतर है।
4: Moving on, US stock markets ended higher yesterday, supported by gains in AI-related technology stocks. However, elevated crude oil prices and a recent surge in US Treasury yields kept investors on edge. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average climbed 0.9%, while the S&P 500 and NASDAQ Composite rose 0.5% each. For the week, NASDAQ rose over 2% after it notched a record high close on Tuesday. The S&P gained 1.2% and the Dow added 0.3% over the week. Meanwhile, U.S. President Donald Trump said he had a very productive meeting with Chinese President Xi Jinping following a 3-day summit that showcased personal diplomacy rather than major breakthroughs in economic relations.
2: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। और दिल्ली से कृपा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: धन्यवाद। मैं ये 2 सवाल है मेरे। एक तो
2: जी, अपना सवाल पूछिए।

0: हेलो
1: हाँ हाँ बोलिए
2: अपना सवाल पूछिए।
0: जैसे कि जीएसटी घटने के बाद कंपनियों ने अब क्या नई ट्रिक अजमाई है कि जो रेट थे वो कुछ उनके अपने एमआरपी बढ़ा दिए है और वो रेट के रेट वैसे भी इनके वैसे ही चलते आ रहे हैं, ये कुछ चीजों में हमने चेक किया। दूसरा सवाल मेरा यह है, जैसे कि हमने पहले एक व्हाइट सोना खरीदा हुआ है तो ये इसकी जानकारी चाहिए कि व्हाइट सोने का रेट मार्केट से में सुना है कि येलो सोने से महंगा है।
3: मेरे ख्याल से जीएसटी के मामले में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपने कहा कि जो खुदरा मूल्य है, अधिकतम खुदरा मूल्य जिसको हम लोग एमआरपी के नाम से जानते हैं, वो बढ़ा दिया गया है। देखिए कंपनी के एक ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि कच्चे सामान के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं, कच्चे माल के, और उसका असर आपकी कंपनी के अलग अलग उत्पाद हैं उनके ऊपर देखने को मिला है। खासतौर पर अगर मैं गाड़ियों की बात करूं जिनके दाम जो है वो बढ़े हैं, लेकिन अगर फिर भी जो अध्ययन किए गए हैं उस अध्ययन में यह है कि जीएसटी की कटौती जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू हुए थे उसके बाद दाम में जो कमी आई, अभी बढ़ोतरी तो हुई लेकिन वो कमी पूरी तरह से हम कहें कि खत्म हो गई है वो अभी उचित नहीं है, ये अध्ययन में सामने आया है, बहुत सारे आंकड़े भी सामने आए हैं। दूसरा आपने प्रश्न पूछा है व्हाइट गोल्ड का, मुझे लगता है कि आप प्लैटिनम का जिक्र कर रहे हैं जहां पर ये चर्चा होती है। और दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखिए कि अलग अलग गोल्ड की भी बात की जाती है, कहीं पिंक गोल्ड की बात की जाती है, ग्लो रेड गोल्ड की बात की जाती है, तो ये वो सोना है जो कि हम जिस गोल्ड मेटल की बात करते हैं, जिस सोना धातु की बात करते हैं वो ये नहीं है, ये मिश्रित धातु है। और व्हाइट गोल्ड एक अलग तरीके का, आप जैसे प्लैटिनम का जैसे मैं समझ पा रहा हूं आपकी बातों से कि वो उसके दाम अलग हैं, वो निश्चित तौर पर उसकी मांग काफी ज्यादा है, और बाकी जो आप अलग अलग सोना देखते हैं वो सोना जो है वो मिश्रित धातु है, ये ध्यान रखें।
4: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिस्प्लेड मिक्स्ड ट्रेंड दिस वीक। ब्रेंट क्रूड नवंबर फ्यूचर्स रोज 0.4% टू सेटल एट $104.32 पर बैरल। West Texas Intermediate Crude November Futures tanked 3.8% to end at $92.41 per barrel over the week. However, oil prices eased over the last few trading sessions as markets grew hopeful of a phased truce between the U.S. and Iran, with both sides reportedly in touch through mediators on the sidelines of the UN General Assembly meeting. Now, we read in the headline story about U.S. rejecting Iran's seven-day proposal to reopen Strait of Hormuz. In such a scenario, Puneet, how should India be navigating the growing crude oil prices, especially if they continue to persist on a northern side?
5: So, Rajesh, clearly for India, the challenge is enormous, because not only do we have to contend with rising crude oil prices in the international market, we have limit, because we are the world's second largest importer of crude oil. So clearly we need very large supplies also. However, what geopolitical tensions are dictating to us, and particularly the latest trade tariff threat by the US on imports from Russia, I think India has really its task cut out in a sense, because we need to import energy from Russia, because there is no other large supply of energy like Russia. And therefore, I think while we have we are looking at Brent crude about $100-$105, we really need to be cautious and going forward need to maintain supplies also to see that they are economic in nature.
2: शिशिर, इस संदर्भ में अगर देखें तो वैश्विक स्तर पर एक दबाव पड़ता है, चाहे वो सप्लाई चेन हो या और भी कोई अन्य आपूर्ति की जो चीजें हैं, जो हर देश को जिसकी जरूरत है, दबाव पड़ता है। ऐसे में किस तरह से हम आगे आने वाला भविष्य देख रहे हैं?
3: देखिए, दो बातें होती है। एक तो होता है कि आप विविधीकरण करते हैं कि आप चलो आप एक जगह से तेल ना लेकर के आप चार जगह से और तेल लेते हैं
2: जी।
3: और हमारे लिए ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए केवल ब्रेंट का प्राइस नहीं होता, हम जिसको कहते हैं इंडियन बास्केट का जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसमें कई तरह के जो स्रोत हैं वो शामिल होते हैं। तो अभी की स्थिति में जो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हम हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जो कुछ घटना चल रही है, जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसमें एक रूस का रास्ता थोड़ा सा हमारे लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें टैरिफ ज्यादा देना पड़े। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि जब जयशंकर साहब की रवियो साहब से बातचीत हुई उसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया और यूएस की ओर

0: अमेरिका की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि राष्ट्रपति के पास वो विशेषाधिकार है कि किसी एक देश के प्रति यदि वो कुछ कमी या रियायत दे सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस बातचीत का सार्थक नतीजा निकलेगा और हमारे ऊपर उतना असर नहीं पड़ेगा जितनी हम आशंकित हैं।
1: नोएडा से हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश जी, कार्यक्रम में अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो मैम, नमस्ते सर को। नमस्ते, मैं आकाश नोएडा से बोल रहा हूँ। मैंने सर, मेरा सवाल ये है, जैसे मैं 29 एज है मेरी और शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है अभी, जैसे हमारी एफडी ब्रेक होने वाली है, मैच्योर होने वाली है, तो हम तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट, तो हम किस कौन हमें गाइड करेगा, कैसे मतलब हम कर सकते हैं, उसके लिए कौन बता पाएगा हमारे को अच्छी मतलब नॉलेज उसके लिए।
0: आकाश, मेरी एक सलाह है कि अगर आपको शेयर बाजार की जानकारी नहीं है तो शेयर बाजार ना जाएं। बाजार रातों रात आपको एक, जिसे कहते हैं ना, क्या एक आपको निवेशक नहीं बना सकता है। तो आपके लिए अभी बेहतर यह है कि अभी थोड़ा समय इंतजार करिए, पहले समझिए बाजार को। बहुत सारे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्रोत हैं, सेबी के कई सारे वर्कशॉप्स होते हैं, वहां पे आप समझ सकते हैं, उसके बाद ही आप निवेश करें। अभी के समय में मेरी सलाह है, ना जाएं, बेहतर होगा।
1: नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रारूप 15 अक्टूबर से लागू होगा। इसके अंतर्गत ₹2000 तक के UPI लेनदेन पर कोई MDR नहीं लगेगा। हालांकि कुछ विशेष श्रेणी के व्यापारियों के लिए प्रतिशत के बजाय एक समान यानी फ्लैट MDR लागू होगा।
3: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस दैट इंडिया कैन अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ओवर 10%, स्ट्रेसिंग ऑन द नीड फॉर अ ग्रेटर अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी, पुनीत जी, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए
0: धन्यवाद।
3: थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, यूनाइटेड स्टेट्स रिजेक्ट्स ईरान्स 7-day प्रपोजल टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इंडियन स्टॉक मार्केट्स रिमेन्स अंडर कंट्रोल ऑफ बेयर्स फॉर 7th कंसेक्यूटिव वीक एंड वॉल स्ट्रीट रैप्स अप वीक विद नोटेबल गेन्स। That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

स्टूडियो की घड़ी में बता रही है कि 11:42 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत आपके साथ मैं विकास, स्वागत आप सबका।

वो शराफत तो दिल के साथ गई, लुट गई कायनात फूलों की। मखदूम मोहिउद्दीन का ये नगमा यानी ये गजल पहुंची आप तक। लता जी की आवाज थी और साथ में थे तलत अजीज। प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का झूमने पर मजबूर करने वाला संगीत और आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ ये गीत लता जी की आवाज और रफी साहब के साथ। प्रोग्राम का ये आखिरी गीत पहुंचता है आप तक। विकास फिलहाल चाहता है आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर से जुड़े हर फैसले को पूरे आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है

कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

0: जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने जारी संघर्षों के बीच संयम, तनाव कम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर दराज के देशों को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए लगातार बने खतरों से वैश्विक समुदाय को मिलकर निपटना होगा। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि पश्चिम एशिया संकट का दो राष्ट्र समाधान स्थायी शांति ला सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि यह युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का प्रमुख विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान का भी उल्लेख किया। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एशियाई खेलों में महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की टोमोका मियाजाकी को सीधे गेम में 21-9, 21-13 से हराया। इससे पहले सिंधु ने दूसरे दौर में चीनी ताइपे की चिउ पिन चियान को 21-19, 21-14 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rules issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the commission was held where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs starting with Bihar was issued with the unanimous approval of the commission. The Election Commission has said that booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision, SIR, to collect the required documents. The BLO will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by Electoral Registration Officer. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar urged restraint, de-escalation and enhanced civilian protection during ongoing conflicts, pointing out that the repercussions of wars are experienced far outside the borders of directly engaged nations. Speaking at the United Nations General Assembly in New York, Dr. Jayashankar remarked that hostilities continue to destabilize global security and developmental progress, leaving countries distant from battle zones exposed to their fallout. Emphasizing the broader global reverberations of armed conflict, Mr. Jayashankar stated that countries far from conflicts are being penalized for no fault of theirs. He also called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions and ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce.
3: We remain deeply concerned over continuing hostilities. The targeting of commercial shipping and seafarers transiting international waterways is simply unacceptable. India calls upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce.
2: Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode.

ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है केदार का तिलक और ये कहानी आपके लिए लिखी है जया आनंद ने। केदारनाथ मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। ये मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और हिमालय पर्वत की छाओ में ये मंदिर है। रास्ता बहुत ही दुर्गम है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। चारों ओर बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच में ये मंदिर है। ये कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, यानी स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई है और ये कत्यूरी शैली में

0: मंदिर बना है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और आसपास का जो दृश्य है वो मनोहारी दृश्य है। आपको याद होगा जून 2013 इस दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक बहुत बाढ़ आई थी और बहुत लैंडस्लाइड्स हुए थे। उस समय केदारनाथ मंदिर का क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ था उस बाढ़ और भूस्खलन से। कई यात्री उस समय इस तीर्थ के दर्शन को आए हुए थे। ऐसे ही समय पर एक और यात्री जब वहां दर्शन के लिए पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ और वहां पर बसे लोगों के साथ क्या हुआ था, इसी की कहानी है हमारी आज की पानी पर लिखी कहानी, जिसे शब्दों में पिरोया है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, डॉक्टर जया आनंद ने। आइए सुनते हैं ये कहानी।
1: अदिति प्रतीक्षारत थी कि कोई घोड़ा कोई खाली कंडिया मिल जाए तो वो भी जल्दी से ऊपर पहुंचे पहाड़ की चोटी पर जहां बैठे हैं केदारनाथ। बारिश बहुत थी और भीड़ भी। इतनी भीड़ देखकर लगा कि क्या आध्यात्मिक मनन चिंतन यहाँ हो सकता है। ईश्वर तो एकांत का स्वरूप है, बुद्धि का विलास वैभव अलग है, पर श्रद्धा भक्ति में जो आनंद है, जो रस है, वो अनुभव नितांत अलग है, बौद्धिक विलास से अलग। भक्ति विश्वास को जन्म देती है, जीवन के प्रति आस्था को उपजाती है। केदारनाथ उसी श्रद्धा उसी विश्वास की उपज है। तेज बारिश की बरसती बूंदें कहीं अपनी थिरकन से मन को लय पर नाचने के लिए मजबूर कर देती है तो कहीं अस्त व्यस्त बता देती है। यहाँ दूसरी परिस्थिति पर ज्यादा जोर था।
2: बारिश हो रही है, ये सब आज ही होना था। अब कैसे जाना होगा, कैसे दर्शन होंगे बाबा केदारनाथ के। और देखो ना, यहाँ कोई साधन भी नहीं दिखाई दे रहा।
3: हाँ, लगता है केदारनाथ हमारी परीक्षा दे रहे हैं।
2: अगर ये बात है तो मुझे विश्वास है हम इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। अब चाहे बारिश हो या कुछ भी, हम दर्शन करके रहेंगे।
3: देखो अदिति, बारिश बहुत है और हेलीकॉप्टर बंद होने की वजह से भीड़ भी बहुत बढ़ गई है। अम्मा पिताजी बच्चे कंडिया में जा चुके हैं और मैं तो घोड़े पर भी जा सकता हूँ। ऐसा करो, तुम भी घोड़े पर मेरे साथ चलो।
2: नहीं नहीं, घोड़े पर तो बिल्कुल भी नहीं, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। कहीं हड्डी वड्डी टूट गई तो?
3: घोड़े पर नहीं तो कंडिया में बैठ जाओ।
1: तभी एक गोरा लंबा मुस्कुराता हुआ पहाड़ी चेहरा सामने आकर खड़ा हो गया।
3: अरे बेटा, चलोगे कंडिया में लेकर?
4: हाँ भैया, ले चलूंगा। दीदी, कंडिया में बैठोगी? बैठो ना दीदी, साहब ये देखो हमारी कंडिया भी मजबूत है।
3: अरे बेटा, वो तो ठीक है, पर तुम्हारी दीदी माने तब ना। देखो अदिति, जिद मत करो, बैठ जाओ कंडिया में।
2: हाँ कंडिया, पर नहिल, क्या मैं बैठ पाऊंगी?
3: क्यों नहीं, आओ।
4: हाँ दीदी, मैं संभाल के ले जाऊंगा आपको।
2: तो ठीक है,
3: हाथ देना तो।
2: अरे
3: ठीक है ना, कंफर्टेबल?
2: अभी ठीक है।
4: देखो दीदी, आप भीगोगी भी नहीं।
2: ये अंदर पानी आ रहा है, इसका क्या करोगे?
4: ऐसे देखो, मैं पॉलिथीन लगा देता हूँ दीदी।
2: ये ठीक रहेगा,
4: ठीक है ना दीदी?
2: अब ठीक है। और देखो, जरा संभल कर चलना, कहीं गिरा विरा मत देना मुझे।
4: ठीक है दीदी,
3: चलो फिर, मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे।

0: अदिति कंडिया में बैठ तो गई, पर प्रकृति का आनंद उस कंडिया के अंदर सिमट कर रह गया। कंडिया में बैठे बैठे अदिति सोचने लगी,
1: हे भगवान, इतना कष्ट उठाकर दर्शन, भगवान आप भी कहां कहां डेरा जमा कर बैठ जाते हैं, और हम भी तो दर्शन के लिए थोड़े थोड़े चले आते हैं, मानो सारा का सारा पुण्य इसी में मिलेगा।
0: अदिति के मन में विचारों की लहरें उठा पटक कर रही थी। 20 साल पहले भी अदिति केदारनाथ आई थी, 12वीं में रही होगी, जोश था तब, इसलिए पैदल की ही चढ़ाई की थी। रामबाड़ा तक रास्ता तो पता ही नहीं चला, लेकिन

0: उसके बाद यात्रा अत्यंत कठिन हो चली थी और तब भी यही प्रश्न उभरा था, भगवान इतना ऊपर जाकर क्यों बैठ गए। उस समय भी वो बारिश में गिर गई थी, अपनों से बिछड़ गई थी और तब हाथों की उंगलियों में सूजन भी आ गई थी। केदारनाथ के एक दो चाय वाले लड़कों ने हाथ में तेल लगाते हुए कहा भी था, केदार बाबा सब ठीक करेंगे। उनकी सेवा परायणता निश्चलता देखकर अदिति की आंखें छलछला गई थी। उनकी केदारनाथ के प्रति आस्था अदिति को भी विश्वास से भर रही थी।
1: दीदी एक बात कहूँ?
2: हाँ बोलो ना।
1: आप बहुत भारी हो।
2: तो तुम क्या चाहते हो, मैं नीचे उतर जाऊँ?
1: थोड़ी देर के लिए।
2: लगता है तुम थक गए हो, चलो मुझे नीचे उतार दो थोड़ी देर के लिए।
1: जाओ दीदी अपना पर्स दे दो।
2: नहीं नहीं
1: नहीं नहीं दीदी, हमें तो आदत है पर सामान के साथ लोगों को कन्या में बिठा कर चलने, पर आपको थोड़ी परेशानी होगी।
2: नहीं नहीं मैं ठीक हूँ।
1: दीदी जानती हूँ मैं तो यहाँ हर साल आता हूँ, केदार बाबा का दर्शन भी होता है और खूब कमाई भी।
2: अच्छा ये बताओ तुम रहने वाले कहाँ के हो?
1: जी दीदी मैं यही गढ़वाल का ही रहने वाला हूँ।
2: और तुम्हारे घर में कौन कौन है?
1: दादी माँ पापा और एक बहन।
2: पढ़ाई नहीं करते तुम?
1: दीदी 12वीं की परीक्षा दी है पर कमाई भी करनी है, पिछले साल 50,000 की कमाई की थी। दीदी अब की न मैं कमाई करके घर जाऊंगा तो पुलिस में भर्ती होऊंगा।
2: क्या बात है। सुनो मैं थोड़ा थक गई हूँ, एक काम करते हैं, देखो वो चाय की दुकान है ना, चलो वहीं थोड़ा रुक कर चाय पीते हैं, ठीक है?
0: हाँ। अदिति थक गई थी, एक चाय वाले के पास बैठकर सुस्ताने लगी। वहीं बच्चे भी मिल गए जो आगे की कंदिया में थे और परिवार के अन्य सदस्य भी। बारिश अभी भी मध्यम मध्यम हो रही थी, ऐसे में गरम चाय ने मानो जान डाल दी। अदिति ने बाकी कंडिया वालों को भी चाय पिला दी। चाय पीते पीते अदिति ने अपनी कंडिया वाले लड़के का चेहरा देखा, गोरा, छोटी छोटी आंखें, सौम्य सहज मुस्कान और कद काठी वो लंबी। चाय पीते पीते अदिति ने पूछा,
2: अच्छा सुनो तुम्हारा नाम क्या है?
1: तिलक है दीदी।
2: बहुत सुंदर नाम, केदार का तिलक।
0: अपनी सौम्य निश्चल मुस्कान बिखेरते हुए उसने कहा, केदार की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के उत्तुंग शिखर के माथे पर लगा हुआ मानो कोई तिलक अपनी दिव्यता और पवित्रता के साथ, जहाँ अकेले चलने भर से पैर थकने लगते हैं, हम हांफने लगते हैं, वहीं तिलक जैसे लोगों को पीठ पर बैठा कर लाद कर सच्चाई ईमानदारी और परिश्रम के साथ केदारनाथ के दर्शन करवाते हैं। सच पूछो तो असली पुण्य के अधिकारी तो यही हैं। चाय पीने के बाद अदिति बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य कंडिया पर सवार होकर चल पड़े।
2: अच्छा तिलक ये बताओ मैं अब भारी तो नहीं लग रही ना तुम्हें?
1: दीदी आप भारी तो।
2: अच्छा तो आसपास में जितनी भी कंडिया जा रही है उनमें क्या पतले पतले लोग बैठे हैं? कितनी कितनी जबरदस्त ठंड है ना, और केदारनाथ में रहने के लिए कितनी सारी धर्मशालाएं बन गई हैं, और अब तो जहाँ देखो वहाँ दुकानें भी दिखाई देती है।
1: हाँ दीदी
2: पहले से बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पर। बहुत पहले आई थी मैं यहाँ पर, लगभग 12 साल पहले।
1: जी दीदी।
2: और मुझे तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। विश्वास मनुष्य को हर कष्ट से लड़ने की क्षमता देता है।
1: दीदी देखो केदारनाथ आ गया। केदार बाबा के दर्शन अच्छे से करना। मैं तो लगभग रोज आता हूँ।
2: अरे वाह तुम रोज आते हो।

ही नेहिल, बच्चे, उसके माता पिता, सास आदि सबके साथ उसने केदारनाथ के दर्शन किए। मन अभिभूत हो गया। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा केदारनाथ का मंदिर अलौकिकता का निदर्शन कर रहा था। सच, ईश्वर साधारण आंखों से नहीं दिखता,

सुंदरता से भरी दृष्टि चाहिए, जैसे उस तिलक की छोटी छोटी आंखों में दिखाई पड़ती। केदारनाथ में बहुत भीड़ दिख रही थी, इतनी पहले नहीं हुआ करती थी। वहाँ कई दुकानें खुल गई थी,

0: केदारनाथ मंदिर को चढ़ती सीढ़ियां, ऊपर विशाल नंदी की प्रतिमा, फिर अंदर गर्भगृह से केदारनाथ का लिंग। रात्रि में केदारनाथ पूर्णतः सुसज्जित थे। अदिति ने सपरिवार दर्शन किया और फिर वापस धर्मशाला के पंडों और सेवकों ने गर्मा गर्म खाना खिलाया। कच्चे खाने में संभव था उनका अपार स्नेह मिश्रित था, इसलिए खाना सबको बहुत स्वादिष्ट लगा। तिलक भी वहां रुका था।
1: ओहो, आज अचानक तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? भैया, बल मुंबई के फैशन और केदारनाथ के मौसम के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता।
0: रात भर सांस लेने में सभी को कठिनाई होती रही। कपूर सूंघ सूंघ कर सभी रात में सोने की कोशिश करते रहे। सुबह आसमान साफ था, बर्फ से ढकी श्वेत उज्जवल पहाड़ियां, ऊपर झांकता हुआ नीला आसमान और सबके बीच केदारनाथ का मंदिर। आंखों के आगे दृश्य मानो अदिति भर लेना चाहती थी। पिछली बार केदारनाथ के पीछे की बर्फ से आच्छादित पहाड़ियां सूर्य की किरणों से सुनहरी सी दिख रही थी। उसने उस दृश्य को भी अपनी आंखों में कैद कर लिया और आज ये दृश्य, तिलक की बात भी याद आ गई कि मुंबई का फैशन और केदारनाथ का मौसम कुछ कहा नहीं जा सकता। चाय पीकर और पवन स्नान करके, क्योंकि पानी से नहाने की हिम्मत तो किसी में थी नहीं, सब अपनी अपनी कंडिया में बैठकर सवार होकर चल पड़े। सूर्य की किरणों ने थोड़ी राहत दी। नेहिल और अदिति के पिता घोड़े पर थे, उसके बच्चे, माँ, सासू माँ धूप के कारण थोड़ा

0: अच्छा अनुभव कर रहे थे।
1: दीदी आओ बैठो।
0: भारी तो नहीं लगूंगी ना तुम्हें?
1: दीदी आप भारी तो।
0: अदिति का चेहरा हल्के गुस्से से भर गया। आखिर वो एक स्त्री है और उसके सामने कोई बेखौफ उसकी बुराई करे। खैर वो कंडिया में बैठ गई। ऊपर स्वच्छ भरपूर नीला आकाश, बीच बीच में धवल बादल, पहाड़, ऊपर हरे भरे पेड़ और उनके बीच में हिमाच्छादित एक चोटी और उस पर पड़ती सूर्य की किरणें। अद्भुत अद्भुत अवर्णनीय दृश्य। प्रकृति की छटा अदिति को मंत्रमुग्ध किए हुए थी। थोड़ा ही चले चल हुए थे कि उसको लगा कि वो तिलक को भारी लग रही होगी और वो पहाड़ के पैदल तो बिना किसी कठिनाई के उतर ही सकती है।
2: तिलक, अच्छा सुनो तुम।
1: हाँ दीदी।
2: तुम मुझे उतार दो, मैं पैदल ही चलूंगी।
1: अरे नहीं दीदी, मैं आराम से आपको लिए हूँ।
2: अरे नहीं नहीं, उतार दो मुझे। हाँ अभी ठीक है।
1: अच्छा दीदी अपना बैग दे दो मुझे।
2: ये लो, संभाल के रखना है ना।
1: जी दीदी।
0: तिलक ने अपनी सहज मुस्कान बिखेरते हुए कहा। अदिति ने इस बार बेझिझक अपना बैग तिलक को दे दिया, क्योंकि इस बार विश्वास के बंधन ने उसे बांध दिया था।
1: दीदी यहाँ केदार बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
2: अच्छा,
1: सबका घर परिवार केदार बाबा के आशीर्वाद से ही चलता है दीदी। मैं तो यहाँ हर बार आता हूँ।
2: अच्छा तिलक, पढ़ाई भी करा करो। क्या
1: पढ़ता हूँ ना दीदी, यहाँ से एक डेढ़ महीने काम करता हूँ फिर जाके पढ़ता हूँ। अब बैठ जाओ दीदी, मैं जल्दी से आपको पहुँचा दूंगा।
0: कंडिया में बैठते ही अदिति की पलकें झुकने लगी। आगे पीछे उसके प्यारे प्यारे बच्चे और माँ और सासू माँ भी थे। उसको नींद आ गई। जब आँख खुली तो नीचे गौरीकुंड में थी।
1: दीदी उतरो, आ गया गौरीकुंड।
2: अरे हम पहुँच गए तिलक।
1: जी दीदी।
2: मुझे नीचे उतार दो।
1: जी दीदी।
0: अदिति कसमसाते हुए कंडिया से उतरी और तिलक को पैसे पकड़ाए।
1: दीदी फिर से आना।
2: हाँ तिलक जरूर आऊंगी, और तुम पढ़ाई करना ठीक है ना?
1: जी दीदी।
0: अदिति का मन किया तिलक की फोटो खींच ले, पर सोचती ही रह गई। लेकिन तिलक की जो छवि उसकी आंखों में बस गई थी वो किसी भी फोटो से अधिक सजीव और जीवंत थी। तिलक अपनी कंडिया पीठ पर लाद कर हंसता मुस्कुराता अपनी धुन में मस्त अपनी राह हो चला। अदिति के मन में आया, जोर से चिल्लाए,
2: ए तिलक,
0: पर वो आवाज उसके भीतर ही सिमट कर रह गई। अदिति और उसका परिवार अब बद्रीनाथ का दर्शन कर कृतार्थ हो गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान कर चले। रास्ते में ही उनको पता चला कि केदारनाथ में भयंकर तबाही हो गई है। अभी वो घर पहुंचे ही नहीं थे कि रास्ते में चाय की दुकान पर टीवी पर केदारनाथ रासती की भयंकर तस्वीरें देखकर वो दोनों हिल से गए।
2: ओ नेहिर, सहेजा हुआ सब बिखर गया। एक स्तब्धता शून्यता से मेरा दिलो दिमाग भर गया है नेहिर।
3: हे भगवान, ये केदारनाथ में तो भयंकर तबाही मची हुई है। केदारनाथ जी के मंदिर को छोड़कर सब आसपास के घर मकान पानी में गिरते जा रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन से सब कुछ नष्ट और भ्रष्ट हो गया है। अभी एक दिन पहले तो हम वहीं थे, केदारनाथ जी का दर्शन, वो धर्मशाला, रामबाड़ा की चाय, गौरीकुंड का स्नान
2: और वो केदारनाथ की चप्पल की दुकान जहाँ से हमने बेटी के लिए चप्पल खरीदी थी,
3: और अदिति वो मिठाई वाला जहाँ सुबह सुबह गर्मा गर्म जलेबियाँ खाई थी। ओह सब ध्वस्त, कुछ भी नहीं बचा।
2: ये कैसा मंजर है, हजारों लोग मर गए, कोई पानी के बहाव के साथ बह गया तो कोई

0: बिना माँ का तो किसी का बच्चा नहीं।
1: कितने ही लोग आपदा में फंसकर भूख प्यास से दम तोड़ रहे हैं।
0: निहिल, अगर हम वहां होते तो?
1: हे ईश्वर, ऐसा तांडव क्यों? हम पर तो कृपा की, पर जो इस त्रासदी में फंस गए, मर गए, उन्हें बढ़कर तुमने क्यों नहीं बचाया? वे भी तो तुम्हारे दर्शन को गए थे। हे प्रभु केदारनाथ, तुम वहां बैठे बैठे ये दर्दनाक नजारा कैसे देखते रह गए?
0: वो देखो निहिल, केदारनाथ के आगे जो विशाल नंदी की प्रतिमा थी, देखो देखो निहिल, वो धसकर आधी रह गई है।
1: और वो गौरीकुंड का रास्ता, अदिति, इसी रास्ते से हम पहुंचे थे गौरीकुंड, जहाँ घोड़े और कंडिया वाले रहते थे। वहाँ तो केवल एक गड्ढा बचा हुआ है।
0: आखिर इतनी कठिनाई से सब ऊपर चढ़कर आपके दर्शन के लिए गए और आप उन्हें बचा भी ना सके, बढ़कर आपने हाथों से उन्हें थाम क्यों नहीं लिया? हे भगवान, सुनो, तिलक बचा होगा ना? वो तो हर साल केदारनाथ जाता है।
1: अदिति, केदारनाथ का आशीर्वाद और सैकड़ों लोगों की दुआएं उसके साथ है। केदारनाथ की इस भयंकर त्रासदी में लोगों को बचाने के लिए सेना के अनेक जवान भी तो हैं। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है वो जरूर बच गया होगा।
0: नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हे ईश्वर, क्यों किया तुमने, क्यों किया, आखिर क्यों भगवान? हे भगवान, तिलक जहां भी हो ठीक हो।
2: ये कहकर अदिति की आंखें भर आई और उसकी दृष्टि आसमान की ओर टिक गई, कुछ ढूंढने की कोशिश में। इस त्रासदी के पीछे अनेक कारण सामने आने लगे। आवश्यकता से अधिक लोगों का केदारनाथ में होना, अधिक इमारतों का बनना, प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन, और इन सब ने प्रकृति को असंतुलित कर दिया, और उन्हीं सब का दुष्परिणाम था केदारनाथ की हृदय विदारक त्रासदी। इस घटना को एक साल बीत गया। अदिति ने केदारनाथ की यात्रा को सहेजते हुए बिखरे घर को व्यवस्थित करना शुरू किया। नेहिल अपने ऑफिस के चक्कर में घिर गए और अदिति का कॉलेज भी खुल गया, बच्चों के स्कूल शुरू हो गए, सब कुछ नियमित दिनचर्या में सिमट गया। इस बीच कभी कभी उसके दिमाग में केदारनाथ की कठोर यात्रा और तिलक का चेहरा यादों के झरोखों से झांक जाते। दीदी, आप बहुत भारी हो।
1: अदिति, अदिति देखो, जल्दी आओ, केदारनाथ की न्यूज है टीवी पर।
0: क्या हुआ? अभी आ रही हूँ। अरे हुआ क्या है?
1: देखो, केदारनाथ की खबर है। केदारनाथ पूरी तरह से सज धज के तैयार है।
0: अरे,
1: कितना सुंदर फूलों से सजाया है मंदिर को।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: उस त्रासदी में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया था और शेष रहा था आस्था का प्रतीक केदारनाथ। हजारों तीर्थयात्री अब तैयार हैं केदारनाथ के दर्शन के लिए। इस बार उन्हें एक साथ हजार हजार के ग्रुप में भेजा जा रहा है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए, जिससे प्रकृति का संतुलन न बिगड़े, नहीं तो यूं ही प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है।
0: बिल्कुल सही कहा नहीं। आध्यात्मिकता जीवन में बहुत जरूरी है, पर उसमें विज्ञान का समन्वय होना भी तो चाहिए ना।
1: हाँ, इन दोनों के समन्वय से ही आस्था का जन्म होता है और आस्था से जीवन का।
0: जी,
1: इसलिए पिछले वर्ष मृत्यु का तांडव देखने के बाद भी हजारों लोग केदार बाबा के दर्शन के लिए तत्पर हैं, अपार जीवन शक्ति और ऊर्जा के साथ।
0: ये सब देखकर मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया है। निहित, तिलक भी जरूर कहीं ना कहीं ठीक होगा। उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है।
3: दीदी, आप बहुत भारी हो। केदारनाथ के दर्शन अच्छे से करना।
2: भागती दौड़ती जिंदगी में समय अबाध गति से आगे बढ़ता है। केदारनाथ की त्रासदी को लगभग 5 साल बीत गए हैं। नेहिल को ऑफिस के काम के सिलसिले में जम्मू जाना था।
1: सुनो अदिति, ऑफिशियल टूर है, जम्मू जाना होगा।
0: नेहिल,

0: वैष्णो देवी के दर्शन भी कर लूंगी।
1: ठीक है।
0: और सुनो, बच्चों को यहीं दादी के पास रहने देते हैं। उनके स्कूल खुले हैं तो बस हम दोनों चलेंगे।
1: ओके, तो सामान पैक कर लो, इसी संडे निकलना है जम्मू के लिए।
0: ये ठीक रहेगा, मैं अभी तैयारी करती हूँ। फ्लाइट समय से थी, नेहिल और अदिति कुछ ही घंटों में जम्मू पहुँच गए। अगली सुबह वो कटरा जाने की बस में सवार हो गए। कुछ घंटों में कटरा आ गया, सभी यात्री उतरने लगे। नेहिल अदिति को सामान के साथ वहीं कटरा चौराहे पर एक चाय की दुकान के पास खड़ा करके होटल बुक कराने चले गए। अदिति वहीं खड़े होकर सारा नजारा देख ही रही थी कि उसे कुछ दूरी पर एक बेंच दिखाई पड़ा। वो भी थक गई थी, उसने अपना एक बैग उठाया। अदिति ने दूसरा बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था तो किसी ने पहले से ही वो बैग अपने हाथों में ले लिया। अदिति चौंकी तो देखा सामने एक लंबा मुस्कुराता हुआ फौजी खड़ा था।
1: रुकिए, मैं सामान लेता हूँ।
0: अरे अरे, आप रहने दीजिए, मैं अपना बैग उठा लूंगी।
1: अरे दीदी, मैं हूँ ना, उठाने के लिए सामान। कहाँ रखना है मुझे बताइए।
0: आप मत उठाइए, मैंने कहा ना आपसे, मैं अपना बैग उठा लूंगी। और भला आप क्यों उठाएंगे मेरा सामान?
1: दीदी पहचाना?
0: अरे अरे तिलक। अरे तिलक।
1: हाँ दीदी, मैं तिलक।
0: तिलक, तुम्हें नहीं पता तिलक, तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है तिलक। तुम जिंदा हो तिलक। तुम
1: जी दीदी,
0: तुम यहाँ पर कैसे आए तिलक?
1: जिस दिन केदारनाथ में तबाही मची उस दिन मैं गौरी कुंड में ही था। सब कुछ तबाह हो गया दीदी, कितना लोग मारा गया कुछ पता नहीं चला, कितना आदमी इधर उधर हो गया वो भी कुछ पता नहीं चला।
0: तिलक, केदारनाथ से आते समय हमने रास्ते में टीवी पर देखा, कितना भयंकर दिन था वो। तुम्हें डर नहीं लगा तिलक?
1: बहुत डर लगा दीदी, ऐसा लगा अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा। दीदी मैं सेना की मदद से किसी तरह देहरादून आ गया, वही प्रेम नगर के एक कर्नल के यहाँ नौकरी करने लगा। दीदी आप बोलते थे ना पढ़ाई करो, तो मैं वहाँ पढ़ाई भी करता रहा। फिर केदार बाबा, कर्नल साहब और आप सब के आशीर्वाद से फौज में भर्ती हो गया।
0: सच तिलक, केदार बाबा की तुम पर असीम कृपा है तिलक, मुझे बहुत खुशी है तिलक। तुमने मुझे इतने सालों के बाद कैसे पहचाना तिलक?
1: दीदी आपकी वो बड़ी बड़ी आंखें, और आप ज्यादा बदली भी नहीं, जैसी हो वैसी ही हो। हाँ थोड़ा भारी हो गए हो ज्यादा।
0: तिलक तुम बिल्कुल नहीं बदले। अच्छा तुम यहाँ पर आए कैसे, जम्मू में तुम क्या कर रहे हो?
1: दीदी जम्मू में मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, तो सोचा कि ट्रेनिंग के बाद वैष्णो माता के दर्शन कर लूँ। मैं तो कर आया दर्शन, और आज ही दोपहर को वापस जा रहा हूँ अमरनाथ।
0: अच्छा,
1: मेरी पोस्टिंग वही हो गई है।
0: अरे वाह,
1: आप आइएगा दोनों।
0: हाँ हाँ तिलक, हम जरूर आएंगे। अच्छा तिलक ये बताओ, तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं दीदी, अभी सगाई हुई है, मेरे गांव की ही लड़की है।
0: अच्छा फोटो वोटो है तुम्हारे पास? है तो दिखाओ ना, अपनी दीदी को दिखाओ।
1: हाँ हाँ, ये देखो दीदी, अच्छी है पर थोड़ी भारी है।
0: तुम्हें तो हर कोई लड़की भारी लगती है, अब क्या उसे खंडिया में बिठाया था तुमने?
1: नहीं दीदी, अभी कैसे, वो तो देखने से ही लगता है।
0: वो देखो निहिल आ गए। निहिल पहचाना इसे? तिलक, केदार का तिलक।
2: अरे वाह तिलक, कंडिया वाला फौज में भर्ती हो गए। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, वाह वाह।
1: हाँ भैया, अब मेरी पोस्टिंग अमरनाथ में होने वाली है, आप सब आइए।
2: हाँ हाँ जरूर वहाँ पर। अरे भाई केदारनाथ जैसी त्रासदी तो नहीं होगी वहाँ?
1: नहीं भैया, सरकार ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है, थोड़े थोड़े लोगों को भेजते हैं, और अमरनाथ में पेड़ पौधों को संभाल कर रखा गया है, सेना भी तैयार है मदद के लिए।
2: वाह भाई वाह, जरूर आएंगे हम तो।
0: और नेहिल, अब तो हमारा तिलक फौजी बन

है। तिलक यूं ही सहज भाव से बोलता जा रहा था। अदिति तिलक की इस सौम्यता और सहजता की प्रशंसक थी, जहाँ ना कोई बनावटीपन था ना ही कोई कृत्रिमता। पहाड़ों से गिरते हुए स्वच्छ धवल निर्मल झरने की तरह था तिलक। मन के तार किस तरह से जुड़े होते हैं, इसकी अनुभूति को अदिति साक्षात अनुभव कर रही थी। अदिति का विश्वास रंग लाया था, केदार का तिलक था और रहेगा।

तो अभी आपने सुनी ये कहानी केदार का तिलक, जिसे आपके लिए लिखा था लेखिका जया आनंद ने। ये कहानी जैसा कि आपने सुनी उस समय की घटना पर आधारित थी, जबकि केदारनाथ मंदिर के आसपास का इलाका बाढ़ से प्रभावित हुआ और बहुत भूस्खलन हुआ। उस समय की ये घटना थी दोस्तों, जो कि वाकई हमारे भी दिल को छू गई। इस कहानी से हमें ये जो संदेश मिलता है वो ये है कि प्रकृति अपने निर्णय स्वयं लेती है, हम खुद इस प्रकृति के एक अंग मात्र हैं। जब हम खुद अपने आप को नियंता मान बैठते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण जरूर प्रभावित होता है। हमें ये मानकर चलना है कि जीना है तो साक्षी भाव से। ये पर्यावरण, ये प्रकृति सभी के लिए है। जीव जंतु जितने भी तत्व हैं इसी के साए तले जीते हैं। जितना भी कोशिश हो, पहाड़ों को बचाना है, नदियों को बचाना है, प्लास्टिक से उचित दूरी बनानी है, ताकि प्रकृति का संतुलन हमेशा बना रहे और हमारी ये खूबसूरत प्रकृति हमेशा और भी खूबसूरत बनी रहे। यही संदेश था आज की कहानी का। और हाँ, एक संदेश और भी था, हम सबसे ऊपर भी एक ऐसी शक्ति है, प्रकृति की शक्ति, जो कि हमें बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। मनुष्य तो इसका एक अंग मात्र है। बस इसी को अंगीकार करते हुए ये कहानी थी। इसी संदेश के साथ हम समेटते हैं आज का ये कार्यक्रम, जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी। रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम

माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने जारी संघर्षों के बीच संयम तनाव कम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम सुनते हैं ऐसे सदाबहार गीत जो हमारी स्मृतियों में, हमारे यादों में अब भी जिंदा हैं और शायद हमेशा रहेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ के साथ।

इस मधुर चांदनी में और इस सदाबहार मौसम में मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़िए मेरे साथ ही, यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अगर गाने की हम बात करें तो अभी जो गीत आप सुन रहे थे वो था फिल्म चोरी चोरी से, आवाज़ थी लता मंगेशकर और मन्ना डे की, संगीत शंकर जयकिशन का था और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1956 में और ये एक लव स्टोरी थी जिसका निर्देशन किया था अनंत ठाकुर ने, और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर और नरगिस ने। चरित्र अभिनेता का अभिनय किया था भगवान दादा, प्राण, डेविड और जॉनी वॉकर ने। ऐसा कहा जाता है कि 1991 में आई फिल्म दिल है कि मानता नहीं इसी फिल्म की कहानी पर आधारित थी। और अब हम सुनवाते हैं आपको अगला गीत रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज में।

जब मधुर चांदनी हो तो सितारों का जमीन पर मिलन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। गीत आप सुन रहे थे, ये सदाबहार गीत आपने सुना फिल्म कोहिनूर से, और आवाजें थी लता मंगेशकर और रफी साहब की, संगीत नौशाद का और गीतकार थे शकील बदायूनी। ये फिल्म आई थी 1960 में और इस फिल्म का निर्माण किया था वीएन सिन्हा ने और निर्देशन किया था एसयू सनी ने। फिल्म में दिलीप कुमार, मीना कुमारी, लीला चिटनिस और कुमकुम ने अभिनय किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही और 1960 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। गीत अगला आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

जब मोहब्बत का ऐलान सरेआम हो ही चुका है तो फिर डर कैसा, पर्दा कैसा। अब बारी है मोहब्बत को इस महफिल में अंजाम देने की, आजमाने की। गीत की अगर बात करें तो आप सुन रहे थे ये गीत दिल तेरा दीवाना फिल्म से, और आवाज़ें थी लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की। संगीत शंकर जयकिशन का था और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी शम्मी कपूर, माला सिन्हा, महमूद, प्राण और ओम प्रकाश ने। गीत अब तक पहुंच रहा है फिल्म मुगले आजम से।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

राम राम मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सब पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज 16 आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल।

मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:43 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत गीता दत्त की आवाज में।

ये बेहद खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म साहिब बीबी और गुलाम फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में, और संगीत था हेमंत कुमार का और गीतकार थे शकील बदायूनी। ये फिल्म 1962 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को निर्देशित किया था अबरार अलवी ने, निर्मित किया था गुरुदत्त साहब ने, और इस फिल्म में अभिनय किया था गुरुदत्त, मीना कुमारी, रहमान और वहीदा रहमान ने। ये फिल्म 1956 की बंगाली फिल्म साहेब बीबी और गुलाम फिल्म की रीमेक थी, और ये फिल्म बिमल मित्रा के उपन्यास साहेब बीबी और गुलाम पर आधारित भी थी। अगला गीत फिल्म बरसात की रात से आप सभी के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंद मई के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद से खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज वित्त, बाजार, आपूर्ति और तकनीक जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल

दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में

तुम्हारे सिवा कौन कर सकेगा मुझे तुम सा प्रेम, तुम्हारे सिवा कौन कर सकेगा मुझे तुम सा प्रेम। आता भी किसको है ऐसा जादू वादू करना, सिर्फ तुम्हारे आने से खिलता है मेरा तन, सिर्फ तुम्हारे आने से खिलता है मेरा तन और महक उठती है मेरे मन की मौलश्री। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 3 सेकंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और आशा जी की आवाज़ के साथ।

की गलियों में अकेले अच्छा नहीं लगता है ना। क्या फायदा मैं निकलूं और आप ना हो। जुड़िए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के 700.1 MHz पर। फिर चलेंगे साथ साथ प्यार की गलियों में, रात के परों पर बैठकर, और मिलेंगे चांद से।

मुझे तो इन भीगी भीगी रातों में ऐसा लगता है कि हम सभी बातों की लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएं, जहां पर हमारे साथ चांद हो, तारे हों, रात हो और हो बहुत सारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें। पर फिर याद आता है कि मैं तो स्टूडियो में हूँ और समय से और गानों से और चीज़ों से बंधी हुई हूँ, तो क्यों ना आपको बातों की लॉन्ग ड्राइव पर यहाँ स्टूडियो से सीधे एक लंबी यात्रा करवाई जाए। अगला गीत आप सभी के लिए, क्योंकि मैंने कहा है ना कि वादा जब हम करते हैं तो उसे निभाते जरूर है। अगला गीत आप ही के लिए।

देखिए, ये दुनिया वाले तो जरूर कहते हैं कि वादे तो टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन हम यानी आपके जो रेडियो साथी हैं, ये कोई वादा नहीं तोड़ते, बल्कि हर पल आपका साथ निभाते हैं। वादा हर रोज आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का, वादा आपको खूबसूरत गीत सुनवाने का। अच्छा, एक बात बताइए, आपने भी किसी खास इंसान से कोई ना कोई वादा जरूर किया होगा, या किसी ने आपसे किया होगा। जो भी हो, आज का मौसम ये गवाही जरूर दे रहा है कि दिल के रिश्तों में वादों की मिठास रहनी चाहिए, चाहे रिश्ता रहे या ना रहे। अगला गीत अभी के लिए।

फना होने के और भी सबब मौजूद थे बहुत, फना होने के और भी सबब मौजूद थे बहुत, हमने फिर भी उनसे एक मुलाकात जरूरी समझी।

101 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:40 और 23 सेकेंड। आप सुन रहे हैं रात सुरमई। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

वैसे प्यार का ये वाला रंग कितना खूबसूरत होता है ना, जहाँ लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती, निगाह उठती है, आंखें शर्माती हैं और प्यार का इजहार हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये इजहार ज्यादा, जबान से ज्यादा दिल तक सफर तय करता है, ये दिल पर ज्यादा असर करता है। और अगर इस वक्त आपका दिल भी किसी के लिए तेजी से धड़क रहा है और आंखों के सामने कोई हसीन चेहरा घूम रहा है, तो फिर ये अगला गीत आप ही के लिए।

0: ये सच बात है कि वक्त बीत जाता है, जमाने बदल जाते हैं, लेकिन साहिर साहब के लिखे हुए ये लफ्ज आज भी दिल और दिमाग पर उतना ही असर डालते हैं जितना जब डालते थे जब ये लिखे गए थे। इसलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि शायर जो है वो समय को लांघ जाता है, शायर शब्दों को लांघ जाता है। अगला गीत आप ही के लिए।
1: ओ सोनिए मां छुट्टियां

रातसुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अब से 3 बजे होंगे समाचार और 3:10 पर हम राही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगे रूपा धवन। मुझे यानी अपनी रात के हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज वित्त, बाजार, आपूर्ति और तकनीक जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के क्षेत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार एआई मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के साथ अपनी साझेदारी में एआई को भी शामिल करेगा। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी

सहकारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 3:11:21। ये समय और इस वक्त आपके साथ हूं मैं, आप ही की अपनी दोस्त रूपा धवन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम आपका पसंदीदा हमराही। हमराही में आज हम सुनेंगे कुछ ऐसे युगल गीतों को जो हमें फिर से उस मोहब्बत की दुनिया में ले जाएंगे, जहां हम और आप एक बार फिर से खो जाने को तैयार हैं। दिल और सांसों पर अधिकार जब तुम्हारा हो गया, दिल और सांसों पर अधिकार जब तुम्हारा हो गया, सोना पड़ा ये जीवन फिर से हमारा हो गया। तुम मिले तो थम गई धड़कन की सारी उलझने, बेफिक्र बहती कश्ती को किनारा हो गया।

जब हमारे दिल पर किसी का अधिकार हो जाता है तो हम अपने दिल को चाहे जितनी मर्जी जोर लगा दें, हम अपने आप को उनकी यादों से कभी भी दूर नहीं जा सकते।

वैसे दोस्तों, दिल और मोहब्बत, सच्चे प्रेम का समर्पण, गहरा विश्वास और सुरक्षा का एहसास है। जब जीवन में सही जीवन साथी का साथ मिलता है तो इंसान की भावनाएं बिल्कुल बदल जाती हैं, जीने का नजरिया बेहद ही खूबसूरत हो जाता है। आप क्या कहते हैं? शायद आप सहमत होंगे हमारी बात से।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां आप है हमराही में मेरे साथ यानी अपनी दोस्त रूपा के साथ। और वक्त बता दें आपको, जी हाँ, हमारे स्टूडियो की घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि वक्त हो चला है

3:34 और 47 सेकंड। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं दिल और मोहब्बत की। मोहब्बत को अलग अलग रंगों से देखा जा सकता है। जी हाँ, प्यार में मीठी नोक झोंक, तड़प की चुलबुलाहट तो होती ही है, और वहीं से प्यार की शुरुआत का बेहद खूबसूरत दौर शुरू होता है।

मुलाकात के वक्त जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब नजरें और खामोशी बातें करती हैं। दिल की दास्तान का सबसे हसीन पल वही होता है जब बिना कहे सब समझ में आ जाता है। ना जाने कौन सी अनकही दास्तान छुपाए बैठा है हर दिल, ना जाने कौन सी अनकही दास्तान छुपाए बैठा है हर दिल। बाहर से खामोश सही, अंदर एक पूरा शहर बसाए बैठा है।

मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे बयां करना बहुत ही मुश्किल है, जिसके लिए शब्द अक्सर कम पड़ जाते हैं। ये महज दो लोगों का जुड़ाव नहीं बल्कि रूह का रूह से रिश्ता है। वैसे मोहब्बत को अलग अलग रंगों में देखा जा सकता है, पर हम अभी फिलहाल इसके इस रूप में देखते हैं।

जीवन मिलता है कितना मिलता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन दिल में जो बातें हैं उन्हें बिना किसी देरी के इसी वक्त कह देना चाहिए जब आपके साथ मुलाकात होती है आपके अपनों की। जी हाँ, ये गीत जो अभी आप सुनेंगे ये प्यार में आगे बढ़ने का ही ऐसा एक संदेश दे रहा है। हरजाई फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए किशोर साहब और आशा जी की आवाज़ों में।

दोस्तों, मोहब्बत के दौरान जब एक दूसरे को चाहने वाले दिल लगी करने लगते हैं तो ऐसा तब होता है जब प्यार को महज खेल या मजाक समझा जाता है, जबकि सच्ची मोहब्बत एक गंभीर एहसास है। किसी के लिए इश्क बंदगी है तो किसी के लिए जिंदगी।

फिलहाल रूपा विदा लेती है हमराही कार्यक्रम से। आप जुड़े रहिए इसी तरह, आपसे कुछ ही देर में समाचार होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज वित्त, बाजार, आपूर्ति और तकनीक जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र, ओडिशा और तेलंगाना में आज बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश की आशंका है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एशियाई खेलों में महिला एकल के

थोड़ी सी देर की जुदाई भी बहुत लंबी लगने लगती है ना, जब अपनों का साथ थोड़ी देर के लिए भी छूट जाता है। तो ठीक इसी तरह हमारा भी हाल ऐसा ही है। उम्मीद है आप भी हमारे बिना उदास तो महसूस कर ही रहे होंगे, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से एक बार हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। समय हुआ है 4:11:34। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ। रूपा धवन आपके लिए लेकर आई है कार्यक्रम अरुणिमा। रुख बदल देती है हवाएं भी अक्सर अपना, रुख बदल देती हैं हवाएं भी अक्सर अपना, जब किसी के दिल में वफा का चराग जलता है।

जी हाँ, अभी आपने सुना पॉकेट मार फिल्म का ये गीत स्वर साम्राज्ञी लता जी की आवाज में। और दोस्तों, अरुणिमा में हम बातें कर रहे हैं आपसे कुछ ऐसी जो हमें दिल में प्रेरणा दे आगे बढ़ने की। जी हाँ अरुणिमा, अंधकार दुख भरा और उसको पार करने के लिए जो जिंदगी के पड़ावों को चीरती हुई जिंदगी को जीने की एक नई आस जगाने की रोशनी जो पहल करती है, उस अरुणिमा को हम अपना अभिवादन करते हैं। तेज हवाओं में भी जो मुस्कुराते हैं वही अपनी मंजिल को खूबसूरत बनाते हैं। ऐसा ही स्वभाव पतंग का होता है, वो कभी भी हवा के साथ बहकर ऊंचाई पर नहीं जाती बल्कि वो हवा के विपरीत टकराकर ऊपर उठती है। हवा का झोंका जितना तेज होता है पतंग उतनी ही मजबूती से आसमान छूती है। कितनी गहराई सिखाती है हमें एक छोटी सी कागज की बनी हुई पतंग जिसे हम पल भर में नष्ट कर देते हैं, लेकिन ये पतंग जिंदगी का जीने का एक अलग ही नजरिया, एक अलग ही संदेश हमें देती है।

जीवन की मुश्किलें हमें काटने या गिराने की कोशिश करती हैं, पर जो इंसान अपने सिद्धांतों और साहस की डोर को मजबूत रखता है और विपरीत समय में भी सकारात्मक रहता है, मुस्कुराता रहता है, वो अपनी मंजिल को पा ही लेता है। क्योंकि देखिए ना, सुख और दुख हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इनसे हम चाह कर भी नहीं बच सकते। आज अगर सुख है तो दुख किसी ना किसी रूप में हमारे सामने जरूर आएगा, और अगर आज दुख है तो सुख भी जल्दी ही आएगा। इसीलिए जब भी कोई ऐसा हालात आए या कोई ऐसी मुश्किलात आए तो हंसना कभी मत छोड़िए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 4:32 और 16 सेकंड। आप हैं अरुणिमा में अपनी दोस्त रूपा धवन के साथ। दोस्तों, जिस तरह से पतंग का अस्तित्व और खूबसूरती तभी दिखती है जब वो हवा से जूझती है, ठीक इसी तरह हमें भी अपनी मंजिल पर पहुंचने की खुशी तब तक नहीं मिलेगी जब तक रास्ते में चुनौतियों का सामना ना हो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन की उड़ान को एक नई गति और खूबसूरती देता है। किसी ने क्या खूब कहा है, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत किशोर साहब की आवाज़ में और आशा जी की आवाज़ में, झुमरू फिल्म से।

वास्तव में ये गीत सिर्फ गीत नहीं अनुभव हैं, जो उस सुनहरे दौर में हमें वापस ले जाते हैं। साथियों कहते हैं कि सच्चाई की डगर माना नहीं आसान, सच्चाई की डगर माना नहीं आसान, चुनौतियों से हारना ये नहीं हमारी पहचान। जी हाँ, माना कि सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, पर अक्सर चुनौतियों का सामना करके ही हम आत्मविश्वास, साहस और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं।

जी दोस्तों, जिंदगी को परिभाषित करना बेहद कठिन है, बेहद मुश्किल है, जिसे हम किताबी बातों से नहीं बल्कि जब हम वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ बेहतर समझ सकते हैं। जिंदगी के हर पहलू, सुख दुख, संघर्ष और आनंद को खुद जीकर अनुभव करना ही जिंदगी को समझना है। और इस जिंदगी के सफर में जब हमारे दुख सुख को बांटने वाला कोई अपना हो, कोई साझा करने वाला कोई अपना दोस्त हो, तो ये दुख बहुत ही कम लगने लगते हैं और इन समय के पड़ाव को हम आसानी से पार कह जाते हैं। खैर, निदा फाजली साहब का एक शेर याद आता है इस समय। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, अपनी दोस्त रूपा के साथ हैं और रूपा आपके साथ है अरुणिमा कार्यक्रम में।

बिल्कुल सही कहा कि जीवन के जब मोड़ होते हैं ना, उस पर हमें किसी ना किसी ऐसे अपने की तलाश होती है जो हमारा दूर तक साथ दे। तो आपका साथ तो हम बनाए हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जो हमेशा जुड़ा हुआ है आपके साथ और आपका साथ हमेशा देता रहेगा, आपके हर पल में, हर क्षण में। समय बहुत अमूल्य है। कभी कभी हम आने वाले कल की चिंता में आज के समय को भी खो देते हैं। तो भाई, इसे बेकार ही अपने हाथों से क्यों जाने दे भला। हर क्षण हर पल को भरपूर उत्साह और खुशी से जिए। किसी ने सच ही कहा है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक कर अंगार बनती है, और पैरों तले रौंदी गई मिट्टी एक ना एक दिन मीनार बनती है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

इसी के साथ अरुणिमा से विदा लेती है रूपा। 5:10 पर आपसे फिर से मुलाकात होगी भोर सुहानी कार्यक्रम में। तब तक के लिए विदा दीजिए। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का

0: का अधिकार रखता है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया को शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर बल दिया। एआई के क्षेत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार एआई मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। युद्ध और संघर्ष पर वैश्विक समुदाय से संयम, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूरदराज के देशों को भी इसका नुकसान होता है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिन लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका को देखते हुए कल तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा भी आज तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि अनुकूल मौसम होने पर यात्रा फिर शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र, उड़ीसा और तेलंगाना में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच शुरू होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जाएगी। एक दिवसीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं। वहीं T20 श्रृंखला में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी भारत को आज पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network. The AIR News

हारे का आंचल छूटा, अंधेरे का आंचल छूटा, आसमान में सूरज रूठा, पूरब से एक लाली आई, नव पर स्वर्णिम किरण सुहाई, पंछी गाए मीठे तराने, उड़ने को पंखों को ताने, आलस छोड़ा सब जग जाग, उठ बैठा सोया अनुराग, भोर सिखाती एक ही बात, फिर बीतेगी हर काली रात, नया उजाला नई उमंग, भर लो जीवन में नए रंग। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये समय है भोर सुहानी का, समय हुआ है 5:11 और लीजिए हो गए 12 सेकंड 12 मिनट और 3 सेकंड। आप हैं अपनी ही दोस्त रूपा धवन के साथ भोर सुहानी में। आइए स्वागत करें इस भोर सुहानी का और नमन करें, आराधना करें उस ईश्वर की जिसके नाम जपने से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं, जिसके कई नाम हैं। पुकारा तो कई नामों से जाता है उसे, लेकिन वो सुनता सबकी है।

दोस्तों, ज्योति का अर्थ है ज्ञान, अच्छाई और विवेक। विवेक का प्रतीक है ज्ञान और अच्छाई का प्रतीक है ज्योति। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने का अर्थ है अपने अंदर के ज्ञान और अच्छाई को दूसरों तक पहुंचाना, जिससे पूरे समाज में अज्ञानता और बुराई का अंधकार मिट सके। आइए एक ऐसी ज्योत ईश्वर के आशीर्वाद से संसार को प्रकाशित करें, उस ज्योत से, ताकि सभी का ज्ञान अंधकार को मिटाकर, अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान की एक अलग सी ज्योति प्रज्वलित हो जाए।

दोस्तों, जिस तरह से गंगा नदी जिस प्रकार बिना किसी भेदभाव के सभी को तृप्त करती है और अविरल बहती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने मन में बिना किसी पक्षपात के सभी के लिए प्रेम और करुणा का प्रवाह बनाए रखना चाहिए। ऊंच नीच, जात पात और अहंकार को त्याग कर सभी जीवों में एक ही ईश्वर के रूप को देखना चाहिए। किसी के बहते आंसुओं को पोंछना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दिल्ली वक्त का इशारा है, हमारी स्टूडियो की घड़ी समय बता रही है 5:23। तो जनाब, उठ जाओ। लेकिन दिल कह रहा है कि 5 मिनट और सो लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप अभी अभी आंखें मलते हुए उठे हैं, तो सीधे मोबाइल की नीली स्क्रीन की नीली लाइट देखने की बजाय अपनी खिड़की का पर्दा हटाइए। बाहर आसमान का रंग बदल रहा है और हवा में एक अलग और नई ताजगी बह रही है। जी हाँ, महसूस कीजिए इस ताजगी को और तरोताजा हो जाइए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। भोर सुहानी लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आप ही की दोस्त रूपा धवन। नमस्कार।

मिट्टी का पुतला है फिर भी आसमान छूने का ख्वाब रखता है। इंसान भी अजीब है, खुद में ही एक पूरी किताब रखता है। जी हाँ, भले ही हम इंसानों का अस्तित्व कुछ समय को है, लेकिन उसकी सोच, सपने और अनुभव विशाल हैं। वो अपने विचारों और कर्मों से अनंत ऊंचाइयों को छूने का हुनर रखता है। मुश्किल है पर मुमकिन है, इन शब्दों को अपने जीवन में अगर ढाल लिया, उतार लिया, तो हर असंभव कार्य को हम संभव कर ही लेंगे।